91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: हमको मंडी जाना है।
4: ऐसे क्या देख रही है?
5: अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए
5: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी पढ़ देगा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: घर सूर्य घर
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाए, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

संकटों से लड़ना सिखाते हैं और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म।

0: भी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
3: कहाँ चले?
4: वही सब।
3: हमको मंडी जाना है।
4: अच्छा, क्या देख रही
3: है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
5: भाव कहाँ खाए? भाव तो दिए
3: हैं।
5: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
6: नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां, तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। आप विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार में मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: बेबी एक बात बताओ। शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
8: वही जो आप किया करते थे।
7: कौन सी?
8: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

दोस्तों कहते हैं हवाओं के रुख के साथ तो तिनके बहा करते हैं, तुम वो दिया बनो जो आंधियों के बीच भी अपनी रोशनी से पहचाना जाए। इस कड़वाहट भरी दुनिया में अपने भीतर के सादगी और मासूमियत को बचाए रखना सबसे बड़ी खूबी है। बाहर की कड़वाहट या नकारात्मकता चाहे कितनी भी घेरने की कोशिश करे, अगर दिल का बच्चा और अच्छाई जिंदा है तो जीवन की असली मिठास कभी कम नहीं होती, क्योंकि जीत उसे की होती है जो हालात से लड़कर कठोर बनकर भी आखिर में अपनी सादगी और नरमी को बचा कर ले आता है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। जी दोस्तों, 14 अगस्त 2026 का दिन, शुक्रवार का दिन, और इस प्यारी से सुबह के साथ आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो स्वागत है आप सभी का इस बेहद खूबसूरत से, प्यारे से, मिठास से भरे कार्यक्रम में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि ये बातचीत का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो फिलहाल इंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो मंचन धर्मशाला। जी दोस्तों, सुबह सुबह एक नए पल का वेलकम हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, एक नई शुरुआत के साथ अपनी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो आइए इसी खूबसूरती के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं मौसम की अपडेट की ओर। जी दोस्तों, तो मौसम विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार कुछ धीमी सी पड़ती नज़र आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बहुत कम बारिश दर्ज की गई और कई मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम अपेक्षाकृत साफ बना हुआ है। जी दोस्तों, वैसे शाम की हम बात करें तो कुछ हद तक ज़्यादा ही बारिश देखने को मिली, लेकिन हाँ सुबह की हम बात करें कल सुबह की तो बहुत ही ऐसे तेज सी धूप जो थी वो हम सभी ने महसूस की, एक गर्मियों वाले मौसम की तरह। लेकिन एकदम से मौसम की करवट बदली और झमाझम बारिश आप सभी ने देखी, इंजॉय की। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किए हैं। 14 अगस्त को मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसी तरह से अभी फ़िलहाल की हम बात करें दोस्तों तो 19 अगस्त तक बारिश के आसार बताए गए हैं, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो मौसम के अपडेट के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

रहे घटा अठेलिया करे खुशबू भरी हवा दोनों करीब है हर पल है प्रेम का है मेघ तू बता।

0: जी दोस्तों, रिमझिम बरस रहा है पानी, मौसम भी है आज मस्तानी। बस एक कप चाय मिल जाए तो बन जाए बात पुरानी। जी दोस्तों, बरसात का मौसम ही ऐसा होता है, गर्मा गर्म चाय और साथ में पकौड़े, क्या मज़ा आता है। बिल्कुल जी दोस्तों, तो इंजॉय भी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। तो इंजॉय के साथ साथ कुछ खास जानकारियाँ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी दोस्तों, 9:20 हो चुके हैं और अब समय है कुछ खास जानकारियों का, प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को समाचारों की, और उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपने इस ढेर सारे मनोरंजन और बातचीत के साथ।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 राष्ट्र को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों के नाम संदेश रात 8 होगा प्रसारित। सांसद सुरेश कश्यप ने पिंजौर बद्दी नालागढ़ फोरलेन सड़क परियोजना का कार्य जल्द पूरा करने का केंद्र से किया आग्रह। और लाहौल स्पीति जिले की पुलिस अधीक्षक शिवानी महला फेम इंडिया एशिया पोस्ट के राष्ट्रीय सर्वे में देश के श्रेष्ठ पुलिस कप्तानों में शामिल। अब समाचार विस्तार से। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1947 में हुए भारत विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। नरेंद्र मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव व भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है। पेश है ये रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है।
1: राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कल हमीरपुर जिले के बड़सर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह की अध्यक्षता करेंगे और तिरंगा फहराएंगे। राज्य सरकार ने कल 15 अगस्त को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी स्कूल कल खुले रहेंगे और बड़सर में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के संबोधन का सभी स्कूलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और परेड के प्रतिभागी इन दिनों रिहर्सल करके खूब पसीना बहा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन को देखते हुए आकाशवाणी शिमला से शाम 7:45 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज शाम 6:30 पर प्रसारित होगा। इस बीच स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश आकाशवाणी शिमला से आज रात 8 प्रसारित किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बिलासपुर जिले की कोट पंचायत में एक कार्यक्रम में लोगों को सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी दी। राजेश धर्माणी ने बताया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं का समर्थन मूल्य 80 रुपए प्रति किलो और मक्की का मूल्य 60 रुपए प्रति किलो तय किया है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से प्राकृतिक हल्दी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो किया जाएगा। इस बीच राज्य सरकार ने घुमारवीं स्थित मोरसिंगी में बालिका हैंडबॉल छात्रावास खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि इसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग की बालिका खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक आयु वर्ग में 16-16 खिलाड़ियों के रहने व प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। नाहन मेडिकल कॉलेज की कथित अनदेखी और सिरमौर जिले में अनेक सरकारी संस्थान बंद करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाहन में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में राज्यपाल को उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा। बिंदल ने आरोप लगाया कि नाहन मेडिकल कॉलेज में असुविधाओं का अंबार है और ये कॉलेज अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जिले में अनेक स्वास्थ्य व शिक्षण संस्थान और राजस्व कार्यालय बंद कर दिए हैं, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
3: कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने बहुत बढ़िया चलते हुए नाहन मेडिकल कॉलेज को तालाबंदी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। वो 200 बेड का हॉस्पिटल जिसको 500 बेड का हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, उसके भवन निर्माण को बंद करके खंडहर में तब्दील कर दिया। बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हम नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम नया अस्पताल बनाएंगे, पर हजारों हजारों मरीज आज कांग्रेस की जान को रोते हुए दिखाई देते। इनको गरीब बच्चों पर भी दया नहीं आई। दूर दराज के गरीब बच्चे उनके स्कूलों को ताला लगा करके डींगे हाँक रहे हैं। हमने शिक्षा के अंदर बड़ा भारी कीर्तिमान स्थापित कर।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पिंजौर बद्दी नालागढ़ फोरलेन परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसके लिए समयबद्ध कार्य योजना सुनिश्चित की जाए। सुरेश कश्यप ने लोकसभा में नियम 377 के तहत इस सड़क की दयनीय हालत का मामला उठाते हुए कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और उद्योगों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिल सके। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी महला को फेम इंडिया एशिया पोस्ट के राष्ट्रीय सर्वे में देश के श्रेष्ठ पुलिस कप्तानों में शामिल किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से लाहौल स्पीति सहित प्रदेश का गौरव बढ़ा है। ये सम्मान शिवानी महला की जनसेवा की भावना का भी प्रतीक है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: लाहौल स्पीति की पुलिस अधीक्षक शिवानी महला ने अपने नेतृत्व, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण से हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्हें फेम इंडिया एशिया पोस्ट के राष्ट्रीय सर्वे में देश के श्रेष्ठ पुलिस कप्तानों में शामिल किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिस अधिकारियों को इस राष्ट्रीय सर्वे में स्थान मिला है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले लाहौल स्पीति में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हुए SP शिवानी महला की ये उपलब्धि उनके समर्पित नेतृत्व को दर्शाती है। ये सम्मान उनके साथ साथ लाहौल स्पीति पुलिस की पूरी टीम की कर्तव्य निष्ठा और जन सेवा की भावना का भी सम्मान है। SP शिवानी महला की ये उपलब्धि लाहौल स्पीति और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: भाजपा सांसद राजीव भारद्वाज ने चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से विचाराधीन सिकरीधार सीमेंट प्लांट को शीघ्र स्थापित करने की मांग की है। राजीव भारद्वाज ने लोकसभा में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ये परियोजना चंबा जैसे आकांक्षी जिला के आर्थिक विकास और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, आपदा प्रभावितों का पुनर्वास सरकारों की जिम्मेवारी, पीछे नहीं हट सकते। पंजाब केसरी की सुर्खी है, विधानसभा उपाध्यक्ष व मुख्य सचेतक पद पर संजय रतन व आशीष बुटेल के नाम की चर्चा। हिमाचल दस्तक ने मंत्रिमंडल विस्तार की खबर को सुर्खी दी है। हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल स्थगित, देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मिले सुक्खू। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, सिरमौर के डॉक्टर जोगिंदर हब्बी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सिरमौर नाटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई पहचान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस को किया याद। हमीरपुर जिले के बड़सर में कल होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों के नाम संदेश रात 8 बजे होगा प्रसारित। सांसद सुरेश कश्यप ने पिंजौर बद्दी नालागढ़ फोर लेन सड़क परियोजना का कार्य जल्द पूरा करने का केंद्र से किया आग्रह। और लाहौल स्पीति जिले की पुलिस अधीक्षक शिवानी महला फेम इंडिया एशिया पोस्ट के राष्ट्रीय सर्वे में देश के श्रेष्ठ पुलिस कप्तानों में शामिल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

सुसमाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी चढ़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ अपने दिन की शुरुआत को आप सभी प्यारा बना रहे हैं, अपनी डेली रूटीन को आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, नाम, रिश्ते, दौलत, शोहरत और उन बातों का बोझ भी जिन्हें हम उम्र भर ढोते रहते हैं। फिर ना कोई साबित करना होगा, ना किसी से जीतना होगा। समय की गोद में हर दर्द सो जाएगा और जो आंसू कभी रातों को जगाते थे वो भी खामोशी में अपना रास्ता कहीं भूल जाएंगे। उस अंतिम सन्नाटे में बस इतना ही महसूस होगा कि जीवन कभी हमारा था ही नहीं, हम तो बस कुछ पल के मुसाफिर थे।

दोस्तों अलका याग ने कुमार सानू की आवाज़ों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, जिसे लिया था फिल्म स्टंटमैन से। जी दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक नगमा ही है, इसे प्यार से गहराई से अगर हम जिए तो बहुत कुछ है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और थोड़ा सा नजर डालते हैं अपनी जिंदगी की कुछ खास बातों की। और अक्सर दोस्तों, हर कोई इंसान जो है, चाहे हम स्टेटस की बात करें, चाहे हम उनकी डेली रूटीन की बात करें, उनके जीवन दिनचर्या की बात करें, तो हर किसी की एक जैसी नहीं होती है। कुछ बहुत अमीर होते हैं तो वहीं कुछ बहुत गरीब घरों से भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग अपने आप को ना थोड़ा सा पैसों से बहुत अमीर समझते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल से अमीर होते हैं। खैर दोस्तों, बहुत सारी स्कीम्स उन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जाती हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे दूर रह जाते हैं वो जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद होते हैं। उन तक वो बातें पहुंच ही नहीं पाती, वो स्कीम्स पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन चीज़ों के बारे में, तो वो उन सुविधाओं का लाभ जो है वो नहीं ले पाते। और जो लोग भले ही एक अच्छी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनका फैमिली स्टेटस भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों की सुविधाओं की जो है लाभ जो है वो लेने के लिए सबसे आगे रहते हैं। भगवान की दया से सब कुछ होता है, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, दिल से अमीर होना ये बहुत कम लोग होते हैं। एक सेटिस्फेक्शन जो होती है जो हमें नहीं होती। तो ज़रूर आज हम एक खास स्कीम की ही बात करेंगे दोस्तों, जो कि अभी रिसेंटली आप सभी ने उसका नाम सुना भी होगा, ज़रूर बात करेंगे, जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों अपनी बातचीत की तरफ जरूर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ खास जानकारियां। जी दोस्तों, 15 अगस्त बहुत ही नजदीक आपके कदमों तक पहुंचने ही वाला है। जी दोस्तों, यानी कि कल, आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त। ढेर सारी तैयारियां आप सभी ने कर ली हैं इस दिन को खास बनाने की। किस तरह से खास बनाया जा सकता है, कैसे यादगार बनाया जा सकता है, दोस्तों जानकारी कल से ही जुड़ी है तो आप सभी के साथ साझा करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश आकाशवाणी शिमला से 14 अगस्त यानी कि आज शाम 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। FM शिमला, हमीरपुर व धर्मशाला और आकाशवाणी शिमला के सभी रिले केंद्रों से भी मुख्यमंत्री जी का संदेश प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र शिमला से मुख्यमंत्री जी का संदेश 15 अगस्त 2026 को प्रातः 9:30 बजे प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी के संदेश के तुरंत बाद प्रसारित किया जाएगा। जी दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि आप रेडियो गुंजन धर्मशाला से भी इस प्रसारण को सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत खास दिन है कल का, तो इसे खास बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। और दोस्तों इसी के साथ एक और जानकारी आप सभी को बता दूं, प्रदेश सरकार

ये आप सभी तक पहुंचाई गई हैं। और दोस्तों कोशिश रहेगी कि आप सभी ये प्रसारण जो शाम को आज शाम 8 बजे रिले किया जाएगा और सुबह 9:30 बजे तो वो हम आप सभी तक पहुंचा सकें, क्योंकि रेडियो गुंजन आप सभी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी तक हर एक जानकारी को पहुंचाया जाए। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, फिर से बातचीत के सिलसिले में वापस आप सभी के साथ जुड़ेंगे।

दोस्तों इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात कर रहे थे स्कीम की, कि ऐसी कौन सी स्कीम की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल की जिसका उद्देश्य प्रदेश के अति निर्धन और गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली लाना है। कहते हैं गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं होती, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान हर पहलू को प्रभावित करती है। इसी सोच के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है एक बहुत ही खास स्कीम जिसका नाम है अपना परिवार सुखी परिवार योजना। दोस्तों सुखी परिवार सबसे अगर हम नॉर्मल से बात करें तो कब रह सकता है, जब आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में तालमेल हो, एक दूसरे के दुख को समझा जाए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझा जाए। सिर्फ पैसों से ही हम हर एक ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। परिवार में किसी इंसान की अगर कमी है तो वो पैसों से पूरी नहीं हो सकती, वो अपनेपन से पूरी हो सकती है जो हम आपस में बढ़ाते हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर जब हम रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं वो कमी तब पूरी होती है। और ये जो एक तरह से मदद होती है सरकार की तरफ से, ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होती है जो अपनी आर्थिक स्थिति को किसी को बता नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। मजबूरियां होती हैं ना दोस्तों, क्योंकि आज के समय में हर इंसान का मजाक बनाया जाता है। तो खैर इसके बारे में हम और भी जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बेहद ज़रूरी है, और इस स्कीम के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सा मौसम जहाँ हर तरफ चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहते हैं जी। दोस्तों, सावन का महीना भक्ति से भरा हुआ, सावन पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है दोस्तों, इस महीने में शिव जी पृथ्वी पर निवास करते हैं। प्रकृति मानो नया रूप ले लेती है, चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जो आंखों को एक अलग ही सुकून देते हैं। गांव से लेकर शहरों तक पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं, बहन बेटियां मायके आती हैं और सावन के गीत गाती हैं। सड़कों पर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। केसरिया रंग में रंगे कांवड़िए एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। सावन के सोमवार का व्रत, मंगला गौरी व्रत, रक्षाबंधन और हरियाली तीज जैसे बड़े त्योहार इसी महीने में आते हैं जी। दोस्तों, तो जिनकी हिमाचल की हम बात करें, तो ये रिचुअल्स की हम बात करें, तो जिनकी शादी अभी नई नई हुई है, तो वो अपने मायके में जाकर इस मंथ को सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, झूले झूलते हैं और इसको और ज़्यादा प्यारा बना देते हैं। तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं, आप भी आगे बढ़िए और इस खूबसूरत से मौसम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए, प्यारा बनाइए इन प्यारे प्यारे से गीत भरे माहौल के साथ।

तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं अपने इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। सावन का महीना, बहनों का एक बहुत ही खास त्यौहार रक्षाबंधन पे आप सभी के नज़दीक आ रहा है, तो उसकी भी तैयारियां जो है ना वो सभी के घरों में शुरू हो चुकी हैं। जिन्होंने दूर तक अपने पार्सल को भेजना है, जिनके भाई दूर हैं उनसे, तो वो तो अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। और बिल्कुल दोस्तों, यही पल होते हैं ज़िंदगी को ख़ास बनाने के, यादगार बनाने के। खैर दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को जानकारियों की ओर। दोस्तों, जल शक्ति विभाग ने अलग अलग मंडलों में तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। इसके तहत राज्य में 1400 के करीब पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं समेत अन्य पद भरे जाने हैं। 40 से अधिक मंडलों ने भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है, जबकि शेष में भी आने वाले दिनों में ये दौर आरंभ हो जाएगा। जी, तो बहुत ही खास जानकारी है दोस्तों। और इसी के साथ हम स्कीम की भी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे सावन के महीने की। और ये ऐसे पल है दोस्तों कि इस महीने में, जैसे महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो मेहंदी लगाने का शौक है ना, कितना अच्छा लगता है। खुशबूदार मेहंदी जब हाथों में चढ़ती है तो बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से पल हो जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इन पलों को कभी हाथ से जाने मत दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी हमारा समय नहीं है एंजॉय करने का, जब समय आएगा तब एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो समय शायद कभी आए ही ना। इसलिए जो पल आपके पास हैं उसे दिल खोल कर एंजॉय कीजिए और साथ ही एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

बिल्कुल दोस्तों, हम कैसे भूल सकते हैं कि शादियों का सीजन भी एक बार फिर से शुरू हो चुका है, तो धूम तो बनती है, क्योंकि जब शादी जैसा माहौल होता है ना, तो सचमुच एक अलग ही रौनक साथ साथ घर आती है, तो उस माहौल को भी प्यारा बनाना बनता है। जी दोस्तों, सावन का महीना तो चल ही रहा है और ढेर सारे त्यौहार भी हम सभी सेलिब्रेट स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने समय हाथ से गवा दिया तो वो समय दोबारा नहीं आएगा। जी दोस्तों, फिलहाल वापस चलते हैं अपनी उस खास बातचीत की ओर। कौन सी? जो कि हम स्कीम की बात कर रहे थे, अपना परिवार सुखी परिवार। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में करीब लगभग हम बात करें तो 2 लाख के आसपास सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन परिवारों की वास्तविक जरूरतों को समझकर उन्हें अलग अलग सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यानी अब सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि किसी परिवार को सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश होगी कि क्या परिवार के पास रोजगार का साधन है, क्या बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है, क्या परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, क्या रहने के लिए उचित आवास है, क्या परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित है। योजना की खास बात यही है दोस्तों कि ज़रूरतमंद परिवारों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाए, और सचमुच दिया भी जा रहा है अगर हम इस योजना की बात करें, क्योंकि जब परिवार में रहने वाले लोग अगर खुश नहीं होंगे तो वो सुखी परिवार हम कैसे कह सकते हैं। अपनी तरफ से वो पूरे एफर्ट्स करते हैं कि हम अपने परिवार को सुखी रख सकें, उन्हें हंसता खेलता हुआ देखें, लेकिन कुछ मजबूरियाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि वो हालातों के आगे मजबूर हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, खुद को एक कहते हैं ना दोस्तों, टूटा हुआ सा महसूस करते हैं। तो वहाँ ये कुछ बातें, ये कुछ खास योजनाएं उनका सहारा बनने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनके साथ चलने वाली हैं। तो उनके घर के बच्चे भी अब पढ़ाई से दूर नहीं रहेंगे, आर्थिक संकट से बचाव की ओर जाएंगे। जी दोस्तों, कोशिश तो यही है, बाकी देखते हैं किस तरह से हालात इंसान को कहां से कहां लेकर जाते हैं। खैर दोस्तों, आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा, खूबसूरत सा सावन का ही गीत। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया कि सावन को आने दो। खैर सावन तो आ चुका है और आप सभी ढेर सारा एंजॉय भी इस महीने में कर रहे हैं। जी दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि डांट से नहीं अब संवाद से संस्कार बनते हैं, प्यार और समझ से ही रिश्ते संवरते हैं। सोना तो चोट खाकर भी निखर जाता है, लेकिन इंसान सम्मान पाकर ही संवर पाता है। जमाना बदल गया, तराशने के अंदाज बदल गए, अब कठोरता नहीं संवेदनाओं के राज चले गए।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, तो अपनी बातचीत की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं इस गेम से जुड़ी कुछ खास बातें। जब तक कोई भी सुविधा हो, कोई भी स्कीम हो, उसमें कुछ हट करना हो तो उसकी अहमियत को समझा नहीं जाता, और कुछ लोगों तक पहुंचती नहीं है तो वो भी एक सबसे बड़ा इशू है। दोस्तों, हम इंसानों में अक्सर क्या होता है कि हम किसी के साथ अच्छा होते हुए देख नहीं पाते। सभी की बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें कुछ चीज़ें पता चलेंगी, सुनने को मिलेगा और उन्हें लगेगा कि उनके आसपास या उनके रिलेटिव्स में ही, उन ज़रूरतमंद परिवारों में से वो परिवार एक है, और शायद उन्हें बेहद ज़रूरत है उस सुविधा की, लेकिन वो नहीं बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एक स्वार्थ, हमारी जो एक जेलेसी फैक्टर, वो बीच में आ जाता है, हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि इनके साथ अच्छा कैसे हो सकता है, क्यों इन्हें किसी सुविधा का लाभ मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई देती है। हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है ये कि अगर हमारे नॉलेज में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक सहारा बन सकें, उनके लिए सीढ़ी बन सकें, तो क्यों ना उनकी मदद की जाए। ऐसे तो हम बहुत दान पुण्य करते हैं कि शायद हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, तो ये भी तो एक दान पुण्य में से एक है। आप अपनी जेब में से निकाल कर नहीं दे सकते, कम से कम हम किसी की इन्फॉर्मेशन दे के तो हेल्प कर सकते हैं, इसमें क्या ही बुराई है। छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जब किसी गरीब परिवार को अपनी समस्या बताने के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र में ही पहुँच कर उनकी बात सुने, तो ये व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तब तो उन लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, जब भी हमें कोई सुविधा लेनी होती है, उसका फ़ायदा लेना होता है, तो हमें सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, पूरा पूरा दिन हम वहाँ बैठे हैं, अपने रोज़गार को पीछे रख रहे हैं, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर चलाते हैं तो उनके लिए तो एक दिन वेस्ट हो गया, तो है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात। तो अगर उनके गांव में जाकर, उनके घरों में जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाए तो शायद इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आइए दोस्तों, इस बातचीत को फिर से जारी रखेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

उस बहुत ही प्यारा सा ये खूबसूरत गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और एंजॉय करते हैं, यानी कि कुछ खास जानकारियां जानते हैं। दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के रहने वाले सोमन देवनाथ ने HIV एड्स जागरूकता का संदेश लेकर साइकिल से 191 देशों और 7 महाद्वीपों की यात्रा पूरी की है। करीब 19 साल तक दुनिया के अलग अलग देशों में साइकिल से सफर करने के बाद अब उन्होंने भारत भ्रमण शुरू किया है। उनकी मौजूदा यात्रा का उद्देश्य पुनर्मिलन भारत, एक पेड़ एक जीवन और इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स का संदेश देश भर में पहुंचाना है। सोमन देवनाथ ने बताया कि उन्होंने 27 मई 2004 को साइकिल से विश्व भ्रमण शुरू किया था। वर्ष 2021 में भारत लौटने तक उन्होंने दुनिया के 191 देशों की यात्रा की। इस दौरान 36 राष्ट्र अध्यक्षों और 72 प्रधानमंत्रियों से मुलाकात का भी अवसर मिला। यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं से संवाद किया और HIV एड्स जागरूकता के साथ भारतीय संस्कृति तथा सामाजिक सरोकारों का संदेश दिया। जी दोस्तों, उनके अनुसार उनकी विश्व यात्रा के दौरान कई मुश्किल दौर भी आए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहुंचने पर उन्होंने SP कांगड़ा कुलभूषण वर्मा जी से मुलाकात की, साथ ही अब DC कांगड़ा हेमराज वैरवा जी से भी मिलेंगे और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जिला कांगड़ा धर्मशाला में ही शामिल होंगे। देखिए दोस्तों कितनी गर्व की बात है और कितना मुश्किल ये दौर है रहा है इनके लिए, बहुत कठिनाइयों भरा। ये प्रेरणा है एक युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो एक छोटी सी चुनौती के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो देखिए कोई आसान बात नहीं है। अब लोगों को ये भी लग रहा हो क्या ही मुश्किल बात है, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कहना आसान है लेकिन जो इस दौर से गुजरता है, जो इन चुनौतियों को चैलेंज देता है, वही जानता है कि दौर कितना मुश्किल रहा और हम कितने मुश्किल वक्त से लड़कर आगे निकलते गए और जो मंजिल पानी थी वो पा कर रहेंगे। ये हौसला, ये जज्बा हर एक युवा में होना बेहद ज़रूरी है, तभी हम अपनी ज़िंदगी को एक सही मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो इस तरह के जज्बे को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए।

तो सोई के अनुदिशमल हफ्त ओमेगा हर्ट्स पर इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम एक बहुत ही खास योजना की, जो कि अभी रिसेंटली इसकी बात हुई है और इसके बारे में जानना भी हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जनसंवाद का मतलब सिर्फ समस्या सुनना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान तलाशना भी है। किसी परिवार को रोजगार की जरूरत है तो उसे आजीविका से जुड़ी योजना से जोड़ा जाए। किसी बच्चे की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी है तो उसे शिक्षा संबंधी सहायता मिले। किसी परिवार को स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है तो उसे स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंचाया जाए। किसी परिवार को घर की ज़रूरत है तो उसे आवास योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए। यानी लक्ष्य है ज़रूरत की पहचान और सहायता का सही जुड़ाव। दोस्तों, अपना परिवार सुखी परिवार योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को विभिन्न क्षेत्रों की सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें से खास तौर पे अगर हम ध्यान दें तो आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और वित्तीय सुरक्षा, क्योंकि किसी परिवार को

प्यारी बहना सुख सम्मान निधि जैसी सहायता से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें पात्र महिलाओं को 1500 प्रति माह की सहायता का प्रावधान बताया गया है। महिलाओं के हाथ में आने वाली नियमित आर्थिक सहायता परिवार की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहायक बन सकती है। कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च, कभी दवाइयों की ज़रूरत, तो कभी घर का ज़रूरी सामान। छोटी लगने वाली आर्थिक सहायता भी ज़रूरतमंद परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। तो यही छोटी छोटी सी बातें हमारी ज़िंदगी में एक बेहतर नज़रिया सामने लाती हैं।

दोस्तों कहते हैं असफलता अनाथ होती है और सफलता के हजार रिश्तेदार होते हैं। जब इंसान असफल होता है तो उसकी खामियां गिनने वालों के कमी नहीं होते, लेकिन जैसे ही सफलता कदम चूमते हैं वही लोग रिश्तेदारी और अपनापन जताने लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में साथ खड़े रहने वालों को कभी मत भूलिए, क्योंकि सफलता के साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन असफलता में हाथ थामने वाले ही वास्तव में अपने होते हैं। दोस्तों 91.9 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने खूब सारा एंजॉय किया, ये मैं उम्मीद करती हूँ खुद की तरफ से, बाकी तो आप सभी जानते हैं जी। दोस्तों तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

देशभक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: ये सब
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है।
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: www.govv.in
1: हर घर सूर्य घर
2: कैसे
3: कर्तव्य
2: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
4: समझ गए सर।
2: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

की धरती हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी

0: और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
1: कहाँ चले?
2: वही सब।
1: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
3: भाव कहाँ खाए? भाव तो दिए
1: हैं।
3: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी और बेटा।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
6: वही जो आप किया करते थे।
5: कौन सी?
6: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: नमस्कार सभी को। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं हम करने आप सभी से बातचीत। और आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज हम एक विशेष बात इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, ये हैं इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और माया देवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने आप हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: रेडियो गुंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ इंदु सिद्धवाड़ी से, मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी। और फैमिली में
1: मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी बेटा है, एक बेटी है
0: जी। माया जी।
2: जी, मेरा नाम माया देवी है, मैं सिद्धवाड़ी से बिलोंग करती हूँ, और मेरी फैमिली में मेरे पति हैं, दो बेटियाँ हैं और एक बेटा है, और मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: तो ये दोनों गृहिणियाँ हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह देना चाहती हूँ कि जैसे हम हाउस वाइफ कहते हैं ना, जैसे आपने भी कहा हाउस वाइफ, आपने भी हाउस वाइफ, मैं कहूँगी कि आप लोग होम मेकर हैं। क्योंकि अगर हम बाहर नहीं जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं बाहर जाकर, लेकिन घर में हम अपने घर को भी देख रहे हैं, सजा सवार रहे हैं, तो हम अपने घर को बना रहे होते हैं। लेकिन एक विशेषता और भी है श्रोताओं, वो ये है कि ये दोनों एक ऐसी समस्या से भी जूझ रही हैं जो कि समाज में जब लोग देखते हैं ना अक्सर ऐसे लोगों को, तो थोड़ा सा नाक भौं सिकोड़ते हैं और सोचते हैं कि अगर उनके पास इस तरह की समस्या आ जाए तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम कैसे टैकल करें। और ये दोनों शायद, मुझे लगता है कि ये बहुत समय से उन समस्याओं से जूझ रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब इन लोगों के लिए वो समस्या रह गई है। आज हम बात करेंगे दिव्यांगजनों पर, जिसके बारे में बात बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो उस लेवल तक नहीं होती है। और मैं अब इंदु जी से जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इस बात के लिए प्रेरित, इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित भी इन्होंने ही किया है कि इस बात पर बात की जाए। तो इंदु जी, हम बात करते हैं आपके बेटे से। आपके पास एक ऐसा बेटा है जो दिव्यांग है
1: जी,
0: और उसको संभालते हुए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? शुरू से हम लेके चलेंगे, फैमिली तो अब अलग रह गई, लेकिन हम जिस मुख्य मुद्दे पर आज बात करेंगे वो यही है कि बच्चे के साथ आप जूझ रही थी। वैसे कब आपको पता चला कि इसमें ये समस्या है, मतलब और नहीं अब आगे ठीक हो पाएगा, इस तरह का मतलब आपको क्या कब लगा?
1: तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला, डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि बोलते ऐसे ऐसी दिक्कत हो सकता है, इसकी दिक्कत बढ़ भी जाए
0: जी।
1: तो मैंने जब ये चीज़, इस सिचुएशन को फेस करा, तो मैंने एकदम से मतलब स्ट्रेस में आ गई, मैं काफ़ी स्ट्रेस में रही। फिर तो ना नींद ना भूख कुछ भी नहीं, ऐसे बस बड़ी ज़िंदगी ऐसे लगने की मैं तो मतलब ज़िंदगी में आई क्यों, क्योंकि इंसान बाकी सब कुछ तो झेल भी लेता है, लेकिन बच्चे का दुख जो होता है एक माँ के लिए बहुत बड़ा चुनौती होती है कि वो जो है ना। पर इसमें ये भी है कि अगर हम उस चीज़ को अगर फेस करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हमारी भी लाइफ सही रहती है और हम अपने बच्चे को भी सही मतलब डेवलपमेंट कर पाते हैं बच्चे को भी। अगर हमने एक्सेप्ट नहीं करी वो चीज़ तो हमारे लिए मुश्किल है और हमारे बच्चे के लिए बड़ी फिर मुश्किल है।
0: आपको किस समय पता चला था, जब कितना उम्र का हो गया था बेटा आपका?
1: तब मैम मेरा बच्चा था 6 साल का।
0: अच्छा, तभी पता लग गया था।
1: चलता था फिर, लेकिन धीरे धीरे जैसे होते हैं कि दुनिया वाले लोग भी बड़े परेशान करते हैं, हम खुद तो चलो परेशान होते ही हैं, माँ बाप से ज़्यादा कौन परेशान होता है, पर लोग बड़े परेशान कि इधर ले जाओ उधर ले जाओ, सबसे ज़्यादा लोग परेशान करते हैं। एक तो क्या करते हैं, जैसे हम निकलते हैं रास्ते से तो बच्चे को लेके चलना, तो बच्चा थोड़ा मतलब पहले था कि ऐसे चलने में दिक्कत थी, उसको गिर भी जाता था कभी कभार, या फिर थोड़ा उसने ऐसे लंगड़ा के चलना, या तो लोगों ने मतलब जब हम बाहर निकालना ना बच्चा भी, चलो घूमने चलते हैं हम, क्योंकि घर में कितने के बच्चे का वॉक हो जाता है
0: जी,
1: तो लोगों ने क्या करना है उसको देखना ना, तो एक टक देखते रह जाना, तो वो उस टाइम बच्चे ने उस उनकी ओर देखना और मेरी ओर देखना, तो मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं तो समझ जाती थी बच्चा क्या कहना चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा
0: जी।
1: लेकिन लोग जो थे वो इतनी मतलब उस नज़र से देखते थे, मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन बच्चे के सामने मैं भी कुछ भी नहीं बोल सकती थी
0: जी।
1: लेकिन कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पीछे पड़ जाते हैं, आपके बच्चे को है क्या, आप मतलब क्या चाहते हो आप, डॉक्टर ने क्या बोला, आप यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ।
0: हाँ, बहुत लंबी बातचीत होने वाली है अभी कार्यक्रम में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंदु जी आप आज अपनी सारी जितनी भी मन की बातें हैं ना यहाँ पे उड़ेल देंगी कि क्या क्या उन्होंने फेस किया है, और क्या क्या वो चाहती हैं समाज से, कि समाज किस तरह से बिहेव करे, इन बच्चों को अगर देखे तो कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, सारी बातें आज हम कार्यक्रम में करेंगे। और माया जी पर भी हम आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं श्रोताओं। दोस्तों, यहाँ पर हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सजेस्ट करना चाहेंगे कोई गीत?
1: वो बेटा फिल्म का है, वो सुना दो, तेरी उंगली पकड़ के चला।
0: ठीक है जी, हम माया देवी जी की पसंद से सुनते हैं बेटा फिल्म का ये गीत।

0: बहुत ही अच्छा गीत आपने हमें सुझाया माया जी। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से एक बार फिर से हम जुड़ गए हैं इसी टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा आज का विषय है दिव्यांगजन, और दिव्यांगजनों से कैसे हम डील करते हैं। अगर हम जैसे अभी हमारे पास तो सब कुछ दिया हुआ है ना प्रभु ने, लेकिन जब हम सामने से कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं तो क्या हमारा नजरिया उनके प्रति कुछ अलग सा नहीं हो जाता है? उस समय हमें कैसे अपने आप को बिहेव करना चाहिए, खुद में कैसे हमें खुद में बदलाव लाना है उन लोगों के प्रति, इस पर भी आएंगे। माया जी आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इन बच्चों को देख के लोगों की सोच बदलनी चाहिए। जो
0: जी
1: उनकी थिंकिंग है, जो सोच है उनकी, कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये आगे नहीं चल सकते, बढ़ नहीं सकते। वैसे ही पेरेंट्स जो हैं, जो माता पिता हैं, वो तो वैसे ही दुखी होते हैं। पर ये समाज जो है ना, अगर उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो उनका आधा दुख दूर हो जाएगा।
0: आपके साथ भी कोई
1: हाँ, मेरे साथ भी ऐसी कोई घटना है। मेरा बेटा है, अभी 17 साल का हो गया कंप्लीट, तो वो सुन नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता, और देखने में भी दिक्कत है। साथ में ही एक और छोटी बेटी है, उसको भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है।
0: अच्छा
1: मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के साथ मुझे कार्य करना पड़ता है, साथ में घर भी संभालना पड़ता है।
0: जी, वो तो ठीक है, आपके बच्चे हैं आप ही करेंगे, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि समाज के जो लोग हैं वो इस तरह के का रवैया आपके साथ रखते हैं, तो कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके दिल पर काफी ज्यादा लग गई हो?
1: जी, घटना तो हुई थी जब मैं अपने मायके में गई थी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं अपने बेटे को शूज लेके दिए थे, तो बहुत ही अच्छे थे वो, तो बोलने लगे कि इस जलैंगड़ को, वो पहाड़ी भाषा में बोल रहे थे कि इस जलैंगड़ को इतने अच्छे शूज क्यों डाल दिए
0: अच्छा, मतलब इतने महंगे क्यों
1: हैं,
0: खरीद
1: इतने
0: दिए
1: अच्छे,
0: आपने?
1: हाँ इतने महंगे शूज क्यों खरीद दिए हैं, इस जलैंगड़ को, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो आज जो है, मेरे बेटे +1 में पढ़ रहा है।
0: +1 में पढ़ रहा है और आप
1: जी
0: पढ़ा रही हूँ उनको, उसको, मतलब दोनों बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है।
1: जी और बेटी जो 5 क्लास में,
0: 5वीं में पढ़ रही
1: जी
0: है, ठीक है। तो उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल है या नॉर्मल रेगुलर स्कूल में जाते हैं वो?
1: नहीं, पहले रेगुलर नॉर्मल स्कूल में जाते रहे 6 क्लास तक, और बेटी जो है वो जब 2nd क्लास में थी तो नॉर्मल क्लास में थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि इनके लिए एक स्पेशल स्कूल भी है, तो एक स्पेशल जो गर्ल्स स्कूल है वो है NR सुंदरनगर में,
0: जी
1: वो गर्ल हॉस्टल है, और शिमला में है ढली में वो बॉयज स्कूल है।
0: अच्छा, वहां पर डाले हैं आपने अपने बच्चे?
1: मैंने वहां पे वेलफेयर दफ्तर के थ्रू से वहां पे मैंने अपनी फाइल भेजी थी, तो दोनों बच्चों का सिलेक्ट हो गए थे वहां पे, एडमिशन ओपन हो गया था उनका। पर बट ये हुआ कि जो शिमला में ढली स्कूल है वहां पे हॉस्टल का रूम बेटे के लिए नहीं मिला,
0: अच्छा
1: तो उस वजह से हम बेटे को वहां पे नहीं छोड़ पाए, क्योंकि बाहर का रूम लेते तो हम वो ले नहीं सकते थे।
0: तो मतलब बेटी आपकी हॉस्टल में
1: हाँ
0: है
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: बेटा आपके पास है,
1: बिल्कुल,
0: तो यहाँ पे फिर कहाँ पढ़ रहा है?
1: यहाँ पे मैम बोर्ड नगरोटा में जाता है, वो हाई स्कूल में।
0: बॉयज स्कूल में।
1: जी
0: तो आना जाना कैसे करते हैं उसका?
1: आना जाना ऐसा, मैम की डेली मैं अप डाउन करती हूँ, मैं खुद ही लेकर जाती हूँ, खुद ही
0: अच्छा
1: लेकर आती हूँ, मैं पूरा दिन उसी के साथ में रहती हूँ, और मेरा घर का जो काम है वो शाम के टाइम में होता है मैक्सिमम, क्योंकि बेटे के साथ ही ज्यादा टाइम होता है।
0: जी
1: और बीच में कभी अगर हम स्कूल ना जाएं तो हम यहाँ पे तपोवन चिन्ह में कोड करके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर है और स्पीच वगैरह और बहुत सारी चीजें हैं, PGO है, थेरेपीज है, तो वहीं पे मैं उनको 12 साल से जो है वो कंटिन्यू लेके जा रही हूँ। तो वहां से बहुत कुछ सीखा मेरे बच्चों ने, वहीं से आगे बढ़े हैं, और वहीं से मुझे भी सीखने का बहुत मौका मिला।
0: वही मैं कहना चाह रही थी कि देखिए, जब हम इन स्पेशल बच्चों के साथ डील करते हैं ना, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जैसा कि माया देवी जी ने कहा। कार्यक्रम में आगे जरूर बढ़ेंगे, एक और गीत तो हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में। अब ये बड़ा ही खूबसूरत सा गीत, तारे जमीन पर फिल्म का ये गीत सुनिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, तारे ज़मीं पर ये जो फिल्म आई थी, इसमें भी वो जो बच्चा था वो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन सरबल पालसी नामक एक प्रॉब्लम उस बच्चे को भी थी और वो उससे ग्रसित था। उसे जो वर्ड्स या फिर जो नंबर्स हैं वो याद नहीं रहते थे, लेकिन कैसे एक टीचर ने उस चीज़ को समझ करके उस समस्या का समाधान निकाला। और ठीक है, अगर वो पढ़ाई की तरफ नहीं इतना अच्छा कर पा रहा था तो उसको किसी और तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, तो ऐसा भी होता है। और हमारे अगर नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी ऐसी समस्याएं कई बार हो जाती हैं। वो अगर माता पिता कहेंगे डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके मन में वो भाव हों कि हाँ हमें इसी तरफ हमें जाना है। कई बच्चे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे जो अंदर ही अंदर दबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, और फिर वो अपनी लीला समाप्त भी कर लेते हैं कई बार, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हम देख भी रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, इन्हें कुछ भी सुध-बुध खुद की भी नहीं होती है, और इनके साथ अगर डील किया जाए ना तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे सामने रखते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ये बच्चा भी ऐसा कर सकता है। तो 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। अब हम इंदु जी से बात करते हैं। इंदु जी, जैसे कि हम अपने बच्चों को तो खुद घर में संभाल लेते हैं, है ना, अब हमारे पास दिव्यांग बच्चा है या नॉर्मल बच्चा है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि लोगों ने ना बाहर बातें जो हैं वो सामान्य लोगों के लिए भी करनी ही होती हैं, और अगर दिव्यांग होगा तो उसके बारे में तो ज्यादा बात होती है, ज्यादा बातें करते हैं, यानी परेशानी ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो अब आप उसमें क्या कहना चाहती हैं?
1: मैम, उसी टाइम की बात है, मैं जैसे मायके गई थी, वहां से मेरे अपने ही कोई, जैसे मैं मेरे बेटे को, अब वो चलते फिरते नहीं है, बैठा रहता है व्हील चेयर पे है वो
0: जी,
1: तो मैं ऐसे माइंड से बिल्कुल एक्टिव है वो, पूरा अच्छी बात करता है, एक्चुअली करी अच्छी, मतलब बात करेगा,
0: समझता है, हाँ जी, सब कुछ
1: समझता है, पर उसको वही चलने फिरने में दिक्कत है। तो जैसे मैं उसको फ्लैश लेके जा रही थी, तो वहां पर फ्लैश थोड़ी दूर थी, घर में तो जैसे हमने अंडरग्राउंड है, पर वहां पर थोड़ी दूर थी, तो मैं उसको उठा के लेके जा रही थी, तो मेरे कोई नोन ही, मतलब अपने ही लगे बोलने की, बोलते इंदु तुझे तो, तूने तेरे भी कर्म बहुत माड़े हैं, बोलते तूने पिछले कर्म के पता नहीं कैसे किए, पिछले जन्म के कर्म की तू ये, मतलब इतना तुझे अब इस सफर से ये सब सफर कर रही है तू। तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई, मुझे ना उनकी बात, चलो उन्होंने अपने तरीके से सही लगा उनको जो सही, हाँ, सही बोला, लेकिन मुझे ये चीज ना पिंच कर गई। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये तो मेरा बच्चा है ना, मैं तो उसकी माँ हूँ, मेरा अंश है, मैं तो उसको देखूंगी, लेकिन अगर मैं उसकी जगह, मेरी सास होती, ये मेरे पेरेंट्स होते, ये मेरे ससुर होते, कोई भी होता, अगर मैं उनकी सेवा कर रही थी तो ये चीज किसी ने नहीं बोलनी थी।
0: सही बोला आपने,
1: ना तब तो सब ने बोलना था ना, अब तो बड़ा अच्छा कर रही हो, तो तब नहीं किसी ने बोलना कि तेरे कर्म माड़े हैं या कुछ भी है, तब ये चीज किसी ने नहीं बोलनी थी। लेकिन ये चीज मुझे बड़ी बुरी लगी तब, क्योंकि मैं माँ हूँ तो मुझे नहीं बुरा लगता, मुझे से अगर स्पेशल मोम बनाया है तो उस भगवान ने बनाया है, तो मैं स्पेशल मोम, मेरा स्पेशल बच्चा है, तो मुझे, मैं खुश हूँ इसी चीज से, तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी दुख नहीं होती। और मैं मतलब तो लोगों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसी घटिया बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि सामने वाले को कैसी लगती है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
0: इंदु जी की इस बात से मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने एक बहुत ही तगड़ा जो तमाचा है वो ऐसे लोगों के ऊपर मारा है कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि तुम्हारे कर्म कितने खराब हैं कि आपको इस तरह का जो बच्चा है वो मिला, ऐसा मुझे नहीं लगता। बल्कि हाँ, जैसा आपने कहा कि आप तो स्पेशल मॉम हैं, आपको भगवान परख रहा है और आप में कोई क्वालिटी है, इसीलिए आपको इस ये सेवा का मौका दिया गया है ना, बहुत अच्छी बात। इसीलिए ये कार्यक्रम आज हमने रखा है, और जो ग्राउंड लेवल पे जूझ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ऐसे बच्चों के साथ, चाहे वो इनके अपने ही बच्चे हैं, मुझे लगता है इनके पास अगर एक दो और भी आ जाएंगे तो ये उनके भी सेवा करने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे शायद, क्योंकि इन्हें पता है कि इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है। इंदु जी, कभी आपने सोचा कि बच्चे को कहीं स्कूल में डाला जाए?
1: मैम, से बच्चा जाता है स्कूल।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: जाता है।
1: पहले सेंट मैरी में डाला था, फिर वो क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो वहां पर डेली पढ़ाई भी चली हुई थी, लेकिन फिर एक बार क्या होता है, मैम ने ऐसे बोला था कि आपके बच्चे में थोड़ी मुझे दिक्कत लग रही है, तब उस टाइम मेरे छोटा ही था, तो उसकी मतलब बात भी क्लियर नहीं करता था, तो थोड़ा इसको दिक्कत भी थी। तो मैम बोलते कि इसको ना कहीं और स्कूल में डालो, जे खुला अगर कोई स्पेशल स्कूल है ऐसा कुछ तो। पर मैम मैंने ना खुद से दूर नहीं किया अपने बच्चे को, क्योंकि मेरा मन नहीं माना कि मैं अपने बच्चे को जो जो मैं अपने बच्चों की इतनी केयर कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मेरे बच्चे की केयर होगी,
0: हो सकती है।
1: तो मेरा इतना दिल नहीं कभी माना और ना ही मैंने कभी सोचा ये। मुझे ऐसे दाढ़ी स्कूल से भी फोन आया था, जैसे ऐसे है एक स्कूल, वहाँ से मुझे फोन आया था, बोलते हैं आप अपने बच्चे को यहाँ डाल दो, आप चाहे तो हफ्ते में एक बार उसको घर भी ले जा सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया।
0: हार्मनी है उसका नाम, हार्मनी, और एक स्कूल और भी है सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आप माया जी, आपने सूर्योदय में नहीं कोशिश की?
2: मैम मैं गई थी वहाँ पे, पर उस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा एनजीओ में ही जाती थी, जिनमें कोड करके जो एनजीओ तक
0: पहुंचा। अच्छा, अच्छा।
2: तो वहां से ज्यादा सीखा मैंने, मतलब मैं बोलती हूँ कि 100% से भी ज्यादा वहीं पे ही सीखा है मैंने भी और बच्चों ने भी। और आज मैं इस लेवल पर हूँ कि अगर मेरे सामने अगर ऐसे बच्चे आ भी जाए तो मैं उनको हैंडल भी कर लेती हूँ, और कुछ सुझाव देना होता है तो मैं सुझाव भी दे लेती हूँ। और कम से कम इस टाइम मेरा 15-20 लोगों के फोन आते हैं मुझे दिन में, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैडम जी ये काम करना था, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो 12 साल का जो एक्सपीरियंस था वो मैं उनके साथ शेयर कर लेती हूँ, आगे उनको अच्छा लगता है तो वो बात भी करते हैं। और मैं वही बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो एक तो व्यवहार अच्छा रखे और साथ में सपोर्ट करें, दूसरा अगर किस मेरे पास में ऐसे बच्चे हैं, मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ, ये समय मैंने गुजर, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो इन अगर डिसेबल बच्चे होते हैं तो एक्सेप्ट करिए कि हमारा बच्चा ऐसा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करने
0: नहीं
2: बहुत
0: करते।
2: देर
0: बिल्कुल,
2: बहुत देरी
0: ये बात बिल्कुल सही कही आपने,
2: बहुत देरी कर रहे हैं। और उस देरी की वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चे का वेश होता है 1 साल से लेकर 12 तक, वो समय हमारा जो है
0: निकल जाता है
2: और फिर बाद में हम पछताते हैं।
0: तो उसी समय में अगर कोई स्पेशल स्कूल देख लिए जाए तो वहां पर हम अपने बच्चों को ऐसे बच्चों को छोड़
2: बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ते हैं कुछ नहीं। जैसे अब माँ की ममता है, तो माँ की ममता तो नेचुरल है कि नहीं छोड़ना चाहती, पर बच्चों का भविष्य बनाने हैं तो दिल पे पत्थर तो रखना पड़ेगा। मैंने खुद रखा हुआ है, मैंने अपनी खुद की बेटी को छोड़ा हुआ है, पर यह कि आने वाले समय में जब वो पढ़ जाएगी लिख जाएगी तो खुदा न खास्ता मरना तो एक ना दिन ये सभी को ही है,
0: सभी को जाना
2: पर बट ये कि मरने के बाद कल को मुझे कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा कि बच्चों का भविष्य खराब करके गई है। तो मैं तो चाहती हूँ कि निकलो, अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है कोई तो आइए हमारे एनजीओ में, आइए हमसे मिलिए, हम बताएंगे, हम आपके घर वालों से बात करते हैं कि निकलो और निकालो इन बच्चों को।
0: आपका एनजीओ है कोई स्पेशल कॉर्ड से ही?
2: मैं कॉर्ड से
0: जुड़े हुए हूँ। अच्छा, अच्छा,
2: मैं कॉर्ड से जुड़ी हुई हूँ। और अगर आपके घर पे भी अगर किसी को समझाने हैं, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं नहीं समझते हैं, ये पापा है नहीं समझ रहे हैं, तो हमें बुलाएं, हम आएंगे, हम समझाएंगे उनको। पर ये है कि एक चीज और है कि माता जो है ग्राम पंचायत में जो सभा होती है या जनरल उसमें बच्चे को जरूर लेके जाए, दूसरा कहीं पे भी फंक्शन होता तो वहां पे भी निकाले, शर्म ना करे कि हमारा बच्चा ऐसा है। अगर खुद ही माँ खड़ी ना हो गई या बाप खड़ा नहीं होगा तो सामने वाले कुछ ना कुछ बोलते रहे।
0: अच्छा, जब आप बच्चों को लेकर जाते हैं ऐसे फंक्शंस वगैरह में तो बच्चे खुश होते हैं ना?
2: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
0: उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कोई उन्हें कैसे देख रहा है, कैसे क्या कर रहा है, अब तो वो उस उन चीजों से परे हो जाते हैं।
2: जी, पर ये है कि जब वो खुश होते तो हम भी थोड़ा खुश हो जाते कि चलो बच्चे खुश हो रहे हैं हमारे, तो हमें निकालना चाहिए इन बच्चों को बाहर,
0: बाहर
2: घर में तो कैद करके नहीं रखना चाहिए।
0: तो गवर्नमेंट से आप लोगों को किस किस तरह की सुविधाएं मिली हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब फिर से एक गीत ले लेते हैं, आप बताएंगे अपनी पसंद का गीत।
1: ये तो सच है कि भगवान है।
0: ठीक है।

0: जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि भगवान तो है ही और प्रभु हैं, सब देख रहे हैं। और इन बच्चों के लिए जैसे माता हैं, ये भी भगवान ही हैं बच्चों की तो, परंतु उससे ऊपर भी एक शक्ति है और वही सब कुछ करवा रही है। आप मानते हैं ना इस बात को?
1: जी
0: जी,
1: बिल्कुल
0: माया देवी जी।
1: जी बिल्कुल
0: तो जैसे आपने कहा कि बच्चों की ऐसी कंडीशन देखने के बाद आप फिर गॉड से जुड़ी।
1: जी मैम, मुझे बाद में जब मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ था, उसी दौरान मुझे पता चला था कि वो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। तो कौड़ के बारे में मैं नहीं जानती थी पहले, पर बट हमारे ही गांव में एक और लड़की है, वो बिल्कुल भी चलती फिरती नहीं है, बिस्तर पे है।
0: जी
1: तो उनकी जो मम्मी है वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अनीता थापा करके। तो उनके वो जाते होंगे अपनी बेटी को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे को लेके चलना है, आप मेरे साथ में चलिए। तो उनके साथ में मैं जब गई और वहाँ पे बलवीर गुलेरिया जी हैं और अनंत जी हैं, तो वहाँ पे जब उन्होंने उसको आवाजें दी तो वो आवाजें नहीं सुन पा रहा था मेरा बेटा। तो मुझे 2.5 साल के करीब में पता चला कि मेरा बेटा नहीं सुन पा रहा
0: नहीं
1: है।
0: सुनता है।
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: ठीक है, तो ये बातें सुन करके देखिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण भी जागती है कि अगर समाज में बुराई करने वाले लोग हैं, इन्हें धुतकारने वाले लोग हैं, तो सहायता करने वाले लोग भी हैं।
1: जी
0: जिन जिनका नाम अभी आपने लिया वो सभी सहायक ही तो है ना।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: मैम
0: आपको कोई सहायता करने वाले मिले?
2: जी मैम, तपोवन में हम भी मैं भी जाती थी ना पहले, लेकिन अब मेरे बेटा जैसे बिल्कुल ही चल नहीं पाता है तो मुझे तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो रोड की थोड़ी दिक्कत है, रोड बड़ा, वहाँ की गाड़ी बड़ी है, अगर बड़ी गाड़ी आ जाए तो मैं भी उसको बिठा के ले जा सकती हूँ, मुझे ले जाने में और जो थोड़ी दिक्कत होती है।
0: अच्छा, अब ना आप दोनों से ना ये जो श्रोता सुन भी रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय आप स्टूडियो में आ गए हमारे, तो
2: जी
0: इस वक्त आपके बच्चे कहाँ हैं, किसके पास छोड़ करके आए हैं आप?
2: मैम, मैं तो अपनी बेटी के पास छोड़ के आई हूँ, क्योंकि बेटी को छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो आज उसकी मैंने स्पेशल आपने बुलाया था मुझे, और मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि मैं लोगों से बड़ी परेशान हूँ जितनी मैं अपने बच्चे से परेशान नहीं हूँ। क्योंकि बच्चे का तो मैं खुशी खुशी देखती हूँ कि चलो जैसे भी मुझे रब ने दिया है वो गॉड गिफ्ट है मेरे लिए।
0: जी
2: तो पर मैं लोगों से परेशान थी, इसलिए तो मैं ये इस प्रोग्राम में ये जरूर करना चाहती
0: जी
2: हूँ, मैं इस प्रोग्राम में जरूर
0: जी
2: पार्टिसिपेट करूंगी।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें भी आपने एक मौका दिया है। ये जानना चाहूंगी कि बेटी आपकी जो है वो कितनी बड़ी है, उससे बड़ी है छोटी?
2: मैम बेटी बड़ी है, उससे 6 साल बड़ी है।
0: ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, और
2: जी
0: बेटी बहुत प्यार करती
2: हाँ जी मैम बिल्कुल, अभी
0: है।
2: +2 में है वो।
0: अब हम उस पे आ जाते हैं बात पे कि सहायता आपको जो गवर्नमेंट से, सरकार से क्या क्या मिल रही है।
2: मैम ऐसे तो इन्होंने इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे इनका जो बना होता है कार्ड, तो उसमें क्या होता है, UDID कार्ड बना होता है। इसमें बस जो है ना, बस में हम कहीं भी सफर करें उसके साथ एक पर्सन फ्री होता है।
1: जाटीसी बस में
2: हाँ जी
1: जहाँ भी कहीं पे हम सफर करते हैं और जिनका 70% से ऊपर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा जो होता है साथ में, चाहे वो माता है, पिता है, कोई भी है, बहन
0: जी
1: है, वो फ्री होता है साथ में। और ये होता है हिमाचल, मतलब हम आगे ऊना में चले जाते तो उससे आगे हमारा करियर लगेगा, तो जैसे चंडीगढ़ जाना होता है, पर हमारे यहाँ का लोकल जो एरिया
0: हिमाचल के
1: है
0: अंदर।
1: तो
0: हाँ जी
1: वहाँ पे ये UID कार्ड जो है वो चलता है।
0: जी और
2: बट इसका मैम ये है कि जैसे जैसे इनके बच्चे हैं या कोई और भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, कोई भी है, डिसेबल तो कोई भी हो सकता है
0: जी
2: किसी भी उम्र में, तो उनके लिए तो ये तो फैसिलिटी उनके लिए है जो चल फिर सकते हैं ना। जैसे मेरा बेटा बिल्कुल चल नहीं सकता, हम तो हमें कहीं भी जाना हो तो गाड़ी से जाते हैं,
0: हाँ,
2: हम तो नहीं जा सकते बस में, तो इस फैसिलिटी का तो हमें कोई फायदा ही नहीं
0: आपका
2: है।
0: कोई फायदा नहीं है।
2: जी
0: तो इस
2: मैम
0: बारे में भी हम चाहते हैं कि सरकार देखे कि जैसे योजनाएं चलाई गई हैं तो इन बच्चों के बारे में भी थोड़ा सा सोचे कि जो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे हैं। या एक निवन्या करके लड़की थी, उसकी एड हमने बहुत यहाँ से चलाई,
2: जी
0: उसके
2: मैम
0: बारे में हमने बहुत बार बताया कि उसको, वो भी इसी तरह की एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित थी। तो ऐसे बच्चों के बारे में ज्यादा सोचना होगा हमें लगता है सरकार को। चलिए अब हम एक गीत और ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक और सेशन के लिए रेडी रहते हैं।

0: जी श्रोताओं, तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ये एक स्पेशल प्रोग्राम आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ इंदु जी हैं और साथ में हैं माया देवी जी, और ये दिव्यांग जनों की बात आज हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है श्रोताओं कि देखिए, बाहर के लोगों को भी हमने देख लिया, वो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, उनके बर्ताव में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा, या हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम के बाद में थोड़ा सा वो अपने आप को चेंज भी करें जो जो ये कार्यक्रम सुनेगा, लेकिन वो जो बच्चे हैं जो इन समस्याओं से, इन चीज़ों से खुद ही जूझ रहे हैं, उनका मन कैसा होता होगा, ये बातें जो है वो एक माँ ही समझ सकती है। तो हम बारी बारी से दोनों से जानेंगे। माया देवी जी, पहले आप बताएं।
1: मैम, इसमें जैसे मेरे बेटा है अभी जो उसने, मैं लेती हूँ मुझे नींद में, तो मेरा बेटा ना कोशिश करेगा कि मम्मी को नहीं उठाऊँ, कि मम्मी रेस्ट करें। तो
0: अच्छा।
1: हाँ जी, तो वो सोचता है कि मम्मी को ना उठाऊँ, तो जब मैं उठती हूँ ना कई बार, तो या फिर मुझे कभी पर पता चल जाता है कि उसको कुछ जरूरत है किसी चीज़ की, तो मैं पूछती हूँ कि कुछ चाहिए जरूरत है, तो उसने कई बार टॉयलेट करना होता है या उसने पानी पीना होता है, तो बोलता है, मैंने बोला तो आपने बोला क्यों नहीं, बोलता आप सो रही थी तो मैंने नहीं बोला। मतलब वो अंदर से वो भी हीन भावना फील करते हैं बच्चे की, ये करके काम भी करते हैं, हमें भी देख रहे हैं, तो उनके भी दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन को फेस करा है, तो वो उसको कितनी दिक्कत होगी।
0: मतलब आपको, आपको बोलने का मतलब ये है कि वो शरीर से लाचार है,
1: हाँ जी,
0: लेकिन दिमाग से नहीं है।
1: जी,
0: दिमाग से वो सब कुछ समझता है। ऐसे बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं,
1: और जब मैं इसको नहाने के लिए लेके जाती हूँ, तो उसको जब फिर कपड़े चेंज करूँ, तो वो ना खुद को ऐसे कवर करता है, दूसरों के करता ही, दूसरों के सामने मैं तो उसको ऐसे करती नहीं हूँ, चेंज नहीं करवाना कुछ नहीं, लेकिन मेरे सामने कई बार ना बड़ा हो गया, जैसे अब 11 साल के हो गया, 12 साल का स्टार्ट हो गया, तो वैसे कवर करता है खुद को, तो मैं तो समझ जाती हूँ। मैं आज सुबह भी देख रही, जब मैं उसको नहाने लगी थी तो ऐसे कर रहा था, फिर मैंने उसको समझाया, मैं क्या बेटा, मैं मम्मा हूँ आपकी, मम्मा से नहीं शर्म करनी, मैं और हम एक ही हैं, इसमें मुझ में रहो और खुद में कोई ये सब मत सोचा करो। मैं मम्मी उन्होंने मेरे साथ खुल के बात किया करो, कोई बात नहीं, अब लोगों के सामने होता है ये सब, मेरे सामने नहीं ऐसा करना।
0: और माया जी, आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस है इस बारे में?
2: मैम, ये तो है कि अगर इनको कुछ सिखाएं तो ये नहीं है कि पीछे है, हमसे भी आगे है, पर ये है कि इनको एक गाइड लाइन चाहिए अच्छी वाली, और जितना हम इनको गाइड करेंगे उससे अच्छा ही इनसे रिस्पॉन्स मिलता है। और रही बेटे की बात और बेटी की बात, तो वो ये है कि वो उनके कानों से ये है और आंखों से ये है, बाकी तो सोच अच्छी है, उनकी समझ अच्छी है। तो ये है कि जैसे कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो उनको पता होता है कि मम्मा बीमार है, या पापा मतलब कभी थोड़ा जोर से चिल्लाएं तो पता होता है उनको कि पापा मम्मा के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो महसूस करते हैं इन चीज़ों को। तो उनको भी वहाँ पे जब वो थोड़ा सा घर पे मनमुटाव हो जाता है तो उनको भी लगता है कि नहीं यार कुछ हो रहा है, समझते हैं इन चीज़ों को। दूसरी बात ये है कि जैसे अब बेटा है तो उसको तो मैक्सिमम खुद ही बताना पड़ता है साफ सफाई के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, पर बड़ा हो रखा है तो ये है कि अब बता दिया है तो वो खुद कर लेता है, तो अब खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है, उसको खुद होती है कि हाँ मम्मा अब जो मेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रही है, अपना टाइम जो है वो खुद के लिए रख रही है, तो मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। और बेटी है, अभी भी बेटी और बेटे को छोड़ के आई थी, तो ड्राइंग की किताब देख कर आई थी, मैंने कहा मेरे आते समय जब मैं वापस आऊंगी उस टाइम तक आप ये दो पन्ने ड्राइंग की कर देना, कुछ भी करना, चाहे उसमें सेब बनाओ, कार बनाओ, फूल बनाओ, जो मर्जी बनाओ।
0: यही मेरे दिमाग में भी आया था कि इन बच्चों को जैसे आपने कहा था कि बाहर निकालना चाहिए, लेकिन उनके एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? आपने तो बता दिया वो बच्चे ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप भी कुछ करवाती हैं बच्चे से?
1: मैं बच्चे के साथ गेम्स खेलती हूँ, उसको कुछ ड्राइंग बना के ऐसे ऐसे करो, तो वो भी करते रहते हैं, कलर भरने के लिए जैसे उसके टॉय काफी लेके दिए मैंने, क्योंकि दिन पर उसने टाइम कैसे
0: पास करना है,
1: बहुत मुश्किल होता है उनको, और ऐसे बच्चों को नींद भी नहीं बड़ी कम आती है, रात को बड़ी

0: भी डिपेंड करता है ना, हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो वो भी बच्चा उसी अकॉर्डिंग वही सब देखता है, सुनता है।
1: जी, तो हमारी सारी बातचीत का आज निष्कर्ष यही निकला है दोस्तों कि देखिए, बाहर वालों से तो इतना ज्यादा फर्क फिर भी नहीं पड़ता, लेकिन जो माएं ऐसे बच्चों को संभाल रही होती है ना, उनके अपने ही घर वाले जब गलत सलत कुछ भी कह देते हैं तो ज्यादा शायद दुख होता है। तो उसके बारे में आप कोई संदेश देना चाहें?
0: मैं यही बोलना चाहूंगी, अब अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक माँ को डिमोटिवेट तो मत करो, जो वो कर रहे हैं उनको तो करने दो, और उनके बल्कि उनकी वही, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर हम किसी बुजुर्ग के कर रहे होते तो लोग हमारी कितना प्रशंसा करते, तो वही एक चीज सोचनी चाहिए कि हम भी जो हमें जो जैसा भगवान ने बनाया है हमारे बच्चों को, हम खुश हैं उसमें, हमें वैसे ही खुश रहने दीजिए। तो हम भी नहीं पीछे, हमने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे बच्चे ऐसे हों, ये कोई भी नहीं सोचता है, लेकिन जैसा है हमें वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जिंदगी में।
1: आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपके घर वाले साथ में हैं या?
2: मेरा तो मैम पूरे ही गांव साथ में है, जो मेरा गांव है, मैं सारे गांव वालों को धन्यवाद देना चाहूंगी। ये अति परिवार जो है सबसे ज्यादा रोल टेलर करके वो मशहूर है, उनको उस पूरे परिवार को, जितना भी समस्त परिवार है, गांव है, क्योंकि इसका धन्यवाद करने का मतलब ये है कि पूछेंगे कि क्यों कर रही है, तो इसका रीजन ये था कि जब मेरे बेटे को कान की मशीन के लिए डॉक्टरों ने बोला कि इसको कान की मशीन लगाओ, तो मेरे पास मैम मतलब मेरे जो पति हैं वो मजदूरी करते हैं, मैं घर पे रहती हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मशीन अफोर्ड कर सकूं, ले सकूं। तो जब मैंने गांव वालों से बात की, मैं गांव वालों के पास में गई, ज्यादातर अत्री जो परिवार है उनके पास, मैंने कहा भैया एक समस्या है, बोलते हैं हाँ बता तुझे क्या समस्या है, तो बोलने लगे कि मैंने बोला कि ऐसे मुझे कानों की मशीनें लेनी है, पर उसका MRP जो वो 40,000 है, तो बोलते दिक्कत कहाँ आ रही है, तो मैंने कहा दिक्कत ये आ रही है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है जो कि मैं इन मशीनों को ले सकूं। तो सब लोगों ने, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1,000, किसी मतलब मैक्सिमम मुझे सभी ने इकट्ठा करके 16,000 से 17,000 इकट्ठा कर दिया। और दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगी मैं निष्ठा करके NGO है रक्कड़ रोड पे, उनको, क्योंकि बाकी के जो अमाउंट था वो उन्होंने दिया था मुझे, तो इन दोनों परिवारों का और निष्ठा वालों का और पूरे गांव समस्त वासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस चीज के लिए। तो मेरा गांव जो है, जो मेरे गांव के लोग हैं, बहुत सपोर्टेड है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे बच्चों को लेकर कहीं जाना होता है या किसी भी चीज की समस्या पड़ती है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को ही इन्वॉल्व करती हूँ कि आइए और मेरी समस्या में शामिल होइए, और पूरा सपोर्ट करते हैं 100%।
1: तो देखा फिर आपने, देखा फिर आपने कि जब हम एकजुट हो जाते हैं तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। रेडियो गुंजन धर्मशाला से ये स्पेशल कार्यक्रम आपने सुना, और आप दोनों का, इंदु जी और माया देवी जी, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया, सारी रेडियो गुंजन टीम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और रुचिका का भी धन्यवाद जो कि कैमरा के उस पार खड़ी हैं आज, और वहां पर शशि जी रिकॉर्डिंग कर रही हैं। धन्यवाद।

राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7ों को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77,819 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,336 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब,
4: हमको मंडी जाना है। अच्छा, क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
4: हैं,
6: दहेज दिए हैं मतलब।

0: भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
3: वही जो आप किया करते थे।
2: कौन सी?
3: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है अज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम। ता सब तो पहला पंजाबी गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।
1: Good music.

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते
1: मिक्सिंग इन द हाउस।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही है सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है?
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी। पर बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और

0: आपका मुनाफा, बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
2: वही जो आप किया करते थे।
1: कौन सी?
2: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

आनवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई यो कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक तशो तो पहला तो हाँ सारे दा ही इस प्यारे दे कार्यक्रम माटी दी महक च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से जरूर करी थी हुए कने तो हाँ सारे भी जरूर इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी होने न इंतजार तो हम जो रहेंदे कि कालू दी या दो बजते न कने तो हाँ सारे ही कालू दी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न श्रोता भी कॉल करा दे न या मैसेज जड़े से जरूर करा दे न क्योंकि तिना वास्ते भी इंतजार दी जड़ा घड़ी है से जरूर लंबी रहती पर हूँ जड़े से बिल्कुल ख़त्म है। तो तुह सारे भी जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया कने अहाँ भी इस कार्यक्रम दे सफर दा जड़ा आगाज है से जरूर करना है क्योंकि आगाज एक प्यारे दे गीत कने हुईया तो कार्यक्रम दा जड़ा सफर है से और भी प्यारा लगता है। तो ज़रूर इसी गीते कने अहाँ कार्यक्रम दा जड़ा आगाज है से कर दे न फिर ही बाकी दियाँ जड़ा गल्ला न से तुह तक लेकर ही आते हैं।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो शुद्ध तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत तो जरूर शुरुआत हाँ इस गीत कन्ने की थी है कने तो हाँ सारे भी ये गीत भी इंजॉय किया होने कने जेड़ा मेरी गल बात है उस जो भी सुना थी होने ने गल बात हमेशा खास रहती है 14 अगस्त 2026 की यहाँ गल करिए हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा तो जरूर इसी खास दिन कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़िया कन्ने हाँ कन्ने गल बात चिड़े से जरूर करा कन्ने मौसम की ओर अगर नज़र दौड़ाइए तो मौसम भी कुथी ना कुथी जिड़ा बरखाला बने है कन्ने अहाँ दे जिड़ा श्रोता न से जरूर अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो मैम, हेलो
0: हेलो
1: मैम, आवाज आ रही है मेरी?
0: जी नमस्ते जी स्वागत है जी
1: नमो। हाँ जी मैडम जी, मैं सुधीर बोल रहा था नरवाने देना। बस
0: जी सुधीर जी क्या हाल चाल है जी
1: बस बढ़िया बढ़िया जी, बारिश हो
0: जी
1: रही है देर।
0: जी बरखा लगी हो
1: हाँ जी, बरखा थोड़ी देर होएगी ना, क्योंकि ये बरखा हूँ।
0: जी जी जी तो हाँ क्या करा दे जी इस टाइम क्या काम कार छेड़िया
1: बस दुकान में बैठे जी, दुकान में ना अगर कोई ग्राहक नहीं होता कहने मैंने तुम्हारे कॉल करी
0: जी
1: ना।
0: जी अच्छा कोई ग्राहक नहीं होता
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: चलो बरखा दा मौसम है ना जी तो थोड़ा
1: हाँ
0: दिया
1: जी,
0: जी जी
1: टॉपिक
0: जी जी तो
1: क्या तो है
0: जी आज जिहड़ा टॉपिक है ये है कि अहाँ अपनी सोच जो किस तरीके ने रख दे ना जी
1: अच्छा,
0: जी जी तो तुम्हें
1: मतलब
0: क्या लगदा अहाँ दी जिहड़ा सोच है या अहाँ अपना जिहड़ा व्यवहार है से किस प्रकार रखना चाहिए हाँ जो
1: पॉजिटिव रहना चाहिए मैडम जी,
0: जी पॉजिटिव
1: पॉजिटिव
0: जी जी
1: हाँ जी,
0: बो
1: ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ
0: जी बोलने
1: जी
0: वास्ते तो हाँ बोली दे कि हमेशा पॉजिटिव रहे है ना जी
1: जी
0: जी पर हाँ कितना
1: फिर
0: की उदे ऊपर विचार
1: भी
0: करते ना जी
1: हाँ, कुछ भी है ना, मतलब गल ना पॉजिटिव होना चाहिए साड़ी
0: जी
1: गल,
0: जी जी
1: कुछ
0: जी
1: भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पॉजिटिव रहे हमेशा।
0: जी जी जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़ा ऐसे सुनना पसंद करके जी
1: अज गाना जेड़ा सुनना है जीना कांगड़े दा, जेड़ा से सुनाई दे तुम।
0: जी जीना कांगड़े दा
1: ठीक
0: जी जरूर जी
1: है
0: ये गीत ते फरमाइश तो हाँ तक पहुँच जाते हैं जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: जी ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने यहाँ कन्ने गल बात जेड़े से जरूर करी सकते इसी गल बात जो अहाँ इतनी रोक दे ना कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुँचा दे ना तो हाँ सारे भी इंजॉय करा कन्ने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया ही प्यारा दिया गीत, प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना का नाम है सुनील कुमार जी, कने से रहने वाले ने कोठियाँ जलोड़ ते। तो जरूर तिना तक अहाँ फरमाइश पहुँचाई, कने अगले जरा श्रोता न से अहाँ कने जुड़ चुके हैं न, कर दिन तिना कने गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: हेलो
0: नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: शो तो कॉल जड़े से जरूर डिस्कनेक्टेड हो तो कार्यक्रम दे सफर जो अहाँ आगे बढ़ाते हैं ना, क्योंकि सफर जड़े से थुनी थमना चाहिए, क्योंकि जिंदगी च उतार चढ़ाव जड़ा ना से हमेशा चले रहते, कने जिंदगी जड़े से उतार चढ़ाव भरी हुए, कने फिर तो यहाँ अपनी गलबात पर वापिस आते न, कने जड़ा श्रोता न से जरूर कोशिश करा दे न, तिना दी कोशिश जड़े से जारी है, फिर तो गलबात कर देन तिना कने। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, मेरी आवाज़ जड़े से तुह तक पुजा दी जी?
1: हांजी
0: जी
1: ठीक ठाक।
0: हां जी ठीक ठाक इन जी, तुहां कुत्थों ते बोला दी, कने तुहां दा नां के है जी?
1: सुकड़े ते माया बोला दी
0: जी। सुकड़े ते माया जी।
1: हां जी
0: जी माया जी, क्या काम कार तुहां लगया, क्या करा दे?
1: क्या काम कार लाना, रोटियां खा दिया ना करी बैठे हो वहां प्रोग्राम सुन लंदे
0: जी। ता मौसम कदे है सुकड़े वाली साइड? सोच उपर तो तुहें क्या लगदा, हां दी जेड़ा सोच है से अहां किस प्रकार रखना चाहिदी अहां जो?
1: जेड़ा तुहां गल कोई भी टॉप किया हुआ है वो ठीक ही लगदा सारा ही
0: जी। अच्छा ठीक लगदा सारे।
1: अच्छी गल लगदी तुहाडी
0: जी जी। तुम्हारे अपने भी विचार होंदे ना जी, क्योंकि अगर अहां छोटा बच्चा है उस जो भी कुछ ना कुछ सिखांदे ना जी।
1: हां जी
0: जी जिना अगर है गलत काम कर दे तो हां उस जो टोक दे ना कि हेलो हेलो हेलो।
1: आवाज दे
0: जी, आवाज कटी कटी हो दी?
1: हां जी
0: जी उन हो दी क्लियर?
1: हां जी हो
0: जी जी जी। ता माया जी कुंडिया गीत तुहां सुनना पसंद करके
1: भजन सुना दिया
0: जी। कुंडिया भजन सुनना है जी तुहां?
1: माता दा भजन
0: जी कोई भी?
1: कोई भी सुनाए
0: जी। ठीक है जी, सुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा। ए है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने अहां अज जिहड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन से करा देन सोच, क्या अहां जिहड़ा विचार हन से रख देन सोच। बोलने वास्ते तो बड़ा छोटा जिहा लफ्ज़ है, क्योंकि अहां कोई भी काम करते न या कुछ भी बोलते न पहले सोच विचार जरूर करते न कि अहां ये शब्द जिहड़ा बोला दे न से ठीक शब्द बोला दे न कि अहां नकारात्मक शब्द जिहड़ा है से बोला दे न, क्योंकि से अहां पर निर्भर करता है कि अगर अहां कोई भी काम करते न या कुछ भी बोलते न हमेशा सोच विचार जड़े है इसे जरूर करा। तो इसी सोच विचार कन्ने अहां फ्री ते अगे बढ़ते न, कन्ने अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न, तुहां सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा देया गीत, प्यारी देई फरमाइश। जरूर तो सारे जो ये भजन जड़े से पसंद आया होना है, कने तो जेड़ा भजन का आनंद भी ले आना है, कने कार्यक्रम का जेड़ा आनंद है सभी जरूर लै दे होने न। कने इसी कने कार्यक्रम च गलबात जेड़ा करा दे न उसे करा दे न सोच उपर, जरूर सोच जड़े से अहाँ किस तरीके ने अपनी जड़ा सोच है से रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं कि नेगेटिव सोच जड़े से अहाँ अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि हर किसी की जड़ा सोच है ना से अलग अलग है। हर इंसान की जड़ा सोचने का तरीका है या बोलने का तरीका है या अहाँ कोई भी काम करते हैं या अहाँ कोई भी सोच रखा देन तो अहाँ किस प्रकार अपनी जड़ा सोच ऐसे रखा देन से यहाँ पर निर्भर करते हैं। अगर अहाँ कई बार भी होता कि अगर अहाँ ज़्यादा ही सोचना शुरू हो जाते न तो से भी कुछ ना कुछ यहाँ दे स्वास्थ्य जो नुकसान देख रही जाते हैं। कोई भी गल है अगर अहाँ उस जो ज़्यादा ही सोचना शुरू हो जाते न तो कुछ ना कुछ से अहाँ दे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव जड़ा है से जरूर पाती है। तो इससे अच्छा कि जितना तुह लिमिट सोचते न जितना तुह जो लगता है कि यहाँ सकारात्मक सोचा देन यहाँ का जड़ा स्वास्थ्य है से ठीक है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। कई बार अहाँ खुद से भी ज़्यादा जड़े से सोचना शुरू हो जाते हैं, कने सही गल अहाँ अगर तिहा जो पकड़ी करी बैठी आते हैं तो कुछ ना कुछ सही गल अहाँ जो नुकसान देना जड़े से शुरू करी है। तो इससे अच्छा अगर अहाँ ज़्यादा ना सोची करी पॉजिटिव सोचते हैं या अच्छी अच्छी जड़ा कोई भी चीज़ें तिना जो सीखते हैं तिदी और अगे बढ़ते हैं तो ज़रूर अहाँ जो सफलता भी मिलती है कने अहाँ अपनी ज़िंदगी च अगे भी बढ़ी पाते हैं। तो इसी सोच कने अहाँ भी अगे बढ़ना है, कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर च अहाँ कने जुड़ी सकते, कने अगली जड़ा फरमाइश है से तो सारे जो इंतज़ार है कि हूँ पता नहीं खुदी जड़ा फरमाइश है मैं तुह तक पहुँचानी है, तो ज़रूर ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुई है व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना का नाम भी जरूर तुह तक पहुँचाना है, तिना का नाम है इंदु जी कने से रहने वाले न सिद्धवाड़ी से। तो तिना तक अहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचा देना तो सारे भी इंजॉय करा।

0: આંબોલાદીન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તોહા સારે ઇસ વખત કાર્યક્રમ સુના દેન આપની રેડિયો તો શશી કને ઇસી કને તોહા સારે સુન્યા એ પ્યારા દયા ગીત પ્યારી દે ફરમાઈશ ઈસા ફરમાઈશ તે બાદ અહાં ફરી તે વાપિસ આવ્યું આપની ગાલબાત ઉપર તો જરૂર તોહા ભી ગાલબાત કને જુડિયા કને જેડા સમય એસે આપની रफ्तार लेकर जरूर चलिए तो समय के अनुसार अहाँ भी जरूर चलें। सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच जरूर इधर पर सोच विचार करना जरूरी है। हर तरफ कुछ ना कुछ सोच ही है जिड़ा हाँ जो सफलता दी ओर लेकर जाती है या आगे बढ़ने दी जिड़ा राय से जरूर दिंदी है। इसी सोच कन्या अहाँ अगे बढ़ना है कन्या अगले जिड़ा श्रोता न तिना कन्या गलबात जिड़ा से जरूर करनी है। हेलो
1: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: दया मेरा उस नाल की
0: जी दया चाहिए दी ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। तोह कुथु ते बोला दे कने तुहांदा नाम के है जी?
1: मेरा
0: हेलो
1: जी
0: जी हरदेव जी बोला देना जी।
1: जी महाराज
0: जी। तो हरदेव जी मेरी आवाज तो हां तक बिल्कुल क्लियर पुज्जा दी कि है कोई कमी पेशी?
1: कोई कमी पेशी नहीं है जनाब, बिल्कुल क्लियर है
0: जी। अच्छा
1: जी,
0: ताता खरी गल है ना जी, आवाज क्लियर पुजना चाहिए थी ना जी।
1: हां जी
0: जी जी, कई बार ये आवाज जेड़ा ऐसे थोड़ी देर क्लियर नहीं पुजदी है तो कुथी ना कुथी उतार चढ़ाव जेड़े से चले होंगे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी, कई बार श्रोता भी परेशान हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं कि हूँ आवाज जी क्या हुई है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। तो हरदेव जी आज यहाँ जेड़ा गल बात करा देना से करा देना सोच ऊपर ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, वैसे तो तुम सुनी ली होनी मेरी गल बात।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी, तो जरूर अपने जेड़ा विचार हैं तिना जो जरूर साझा करा।
1: देखिए एक सोच ऐसी है कि बड़े प्रेम प्यारे ने कुछ आदमी गलाना सोची समझिए गलाना चाहिए जी,
0: जी जी जी,
1: बिना सोची कभी कुछ गल नहीं गलानी
0: जी
1: जी, कने मीठा बोलना चाहिए सारे जी।
0: अच्छा मीठा बोलना चाहिए
1: ना जी। हां मीठा बोलना चाहिए जी, कि दू आदमी बोले नहीं अरे गल क्या ये साहब के बिल्कुल ठीक है, इन्हें गलाना चाहिए हमेशा कोशिश भी किन्या कई दफा गेड़िए कोई कई ऐसे गल गलाई देते ना बड़े प्रेम प्यारे ने गलाना चाहिए
0: जी जी।
1: हां जी, कने जो प्रेम प्यारे ने बोल देते ना सारे याद रख दे, बोलते फलाना आदमी क्या बड़े अच्छा प्रेम प्यारा है, कने बड़ा अच्छा बोलता है
0: जी जी।
1: तो याद ही रख दे जी
0: जी, याद भी रखते कने कई बार होता ना कि अगला व्यक्ति अगर आहने थोड़ा ज्यादा मतलब सोच विचार अच्छे नहीं रखा दे तो हाँ उसकी वजह ने अपने सोच विचार कहो गलत करना ना जी।
1: हाँ जी
0: जी, कई बार होता ना कि यहाँ भी अपने मन च है हीन भावना जेड़ा से रखी लेंदे कि नहीं अगला जेड़ा व्यक्ति है से इस प्रकार सोच रखा है तहां भी इस प्रकार सोच रखनी है।
1: नहीं जनाब ये दिल दे कड़ी देना चाहिए जी
0: जी, ये सोच तो बिल्कुल ही दिल दे सारी कड़ी दे हां जो।
1: हां जी दिल दे कड़ी देना चाहिए, अपने मन च रखना ही नहीं, अपना दिल क्या है साफ ही रखना चाहिए
0: जी जी।
1: हां जी
0: जी, तो हरदेव जी आज तुहां कुंदिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत जनाब तो हाँ कोई अपना भजन सुनाई दिया जनाब, कोई सुनाई दिया जी।
0: जी जरूर जी, भजन हल बड़े प्यारे प्यारे होंगे ना जी, यहाँ की कोशिश रहती कि जरूर तो हाँ तक पहुँचान।
1: बिल्कुल महाराज, तो हाँ भजन से मैं प्यार तड़के ही सुनना शुरू कर
0: दिया। अच्छा अच्छा, प्यार के सुनना शुरू कर दिया।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, धन्यवाद जी, तो हाँ इतना ज्यादा तो हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दें ना जी।
1: जी महाराज जी
0: जी, धन्यवाद जी, तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से जरूर तुहां तक पहुंचान दें जी।
1: ठीक है महाराज जी
0: जी, तो श्रोताओ फिर यहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ा देना कने तुहां तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुंचान देना।

चरणदास की फरमाइश से गीत अहाँ तीना तक पहुँचाया कने फिर ते अहाँ वापिस अपनी गलबात उपर आई हो न कने तुह जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर।

आइए तो हाँ सारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं फिर हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाने तो हाँ जो लेकर चलने अगली फरमाइश की ओर।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शकों तो सारे पता है कि इस कार्यक्रम का जोड़ा समय है से तो तक रहा है 2-3 बजे तक। तो जरूर तो सारे इस गीत जो इंजॉय करा दे जिंदगी सोनी है। इस गीत की फरमाइश हम जो आयु है योल ते कनतीना का ना वे परसराम जी तो जरूर तिना तक हाँ ये गीत पहुँचाया कनतीना जो नमस्ते भी कने तो सारे जो पता है कि उन कार्यक्रम जोड़ा है से अहम जो यानी कि जोड़ा समय है से अहम जो बोला था कि अनुमति जोड़ा है से जरूर ले लिया तो अनुमति अहम जरूर लेनी है तो हाँ नहीं सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

धरती हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही है सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे कहाँ देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को, इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करना। स्कूटर भी और बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: स्वागत है श्रोताओं। FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर हा तुम अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल न तुंदे? उम्मीद करनो हाल चाल खरे बुने तो सब खुश बुने तंदुरुस्त बुने और अपने घर है मस्त बुने इन श्रोताओं। तो अज करी मौसम री गल करिए श्रोताओं। मौसम री गल है जरूर कर ले लेकिन इंदे श्रोतागण के ने सुसू की कनेक्ट मुझ गए हैं इंतजार रहते हैं बहुत सारे श्रोता जो कि कहने के ने सो चोर बजना और बहुत सारे श्रोतागण सो मुझे बहुत सारे ऐसे कुछ जानने वाले मिलते हैं कुछ यार दोस्त मिलते हैं सो बनते हैं कि इंदी मम्मी इंदी दादी इंदी बहन ऐह अपो चोर बजे रह गया सो रोज़ाना इंतजार कर दिन कि कहने किया सो चोर बजे इंदा गादा कार्यक्रम लाइव होना हा। बहुत सारे श्रोतागण इंदे सलेड़ गोदाम थो इंतजार कर दिन बहुत सारे गमरू थो बहुत सारे खनियारा थो जो जो मतलब मुंजो मोल देगन दिन और बल देगन दे ऑलमोस्ट धर्मशाला कौन सीजन से आप पूरे आ और इवन की भरमौर साइड भी इंदे इतने श्रोतागण जो इंतजार करते हैं। बहरहाल इंदे पहले श्रोता आसू की कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बोलूँ दिन और कड़ी थो बोलूँ दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: हाँ जी कौन बोलूँ दिन और कड़ी थो बोलूँ दिन
1: क्या तो बोलना है मंगल।
0: हाँ जी मंगल जी ठीक ठाक
1: बढ़िया जी बढ़िया जी।
0: और कर कर लगुरेन कैलूर कमाना कदे गो आज कना दिन तुंदा
1: बेल ले यार बस बर्था बर्था हो रही है ना
0: कामकार जीरो
1: कामकार जीरो यंता फाड़े फाड़े जब देना रात्रि जी।
0: अच्छा अच्छा क्या व्यवसाय है मंगल जी अपना?
1: हाँ जी
0: क्या व्यवसाय है अपना मेलिया?
1: अरे तो जगराते जगराते नहीं ना जरा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो हाँ जगराते। अच्छा
1: हाँ जगराते ब्याह भी होंगे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो क्या प्ले कर दें तो? हाँ जी
1: हाँ जी
0: क्या प्ले कर दें क्या तो हाँ कुछ मतलब प्ले कर दें होने ना ढोल बजान दें कीबोर्ड बजान दें की ढोलकी बजान दें
1: ढोल
0: बजान दे
1: क्या
0: बात है। अच्छा मंगल जी तो ढोल ही बजान दें मतलब कुछ कि आहां सब जान दें कि इस हिमाचल से साड़ा इतना मतलब इतना काम नहीं होना इतने पैसे के ना आर्टिस्ट जो मिलते हैं है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो ढोल ही बजान दें कि कन्ने कुछ और व्यवसाय भी रखे अपना?
1: हाँ जी
0: कन्ने कुछ और भी कर दें तो? हाँ
1: हाँ बस और भी कर दे रही दुकान दुकान भी साड़ी चेक कर दूँगे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है मंगल जी।
1: पार टाइम जगराते के नाम या अपना काम चल रहा था।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी
0: चलिए मंगल जी बहुत ही प्यारी गल है। मंगल जी कौन दे गीत सुनना पसंद करके तो? हाँ मेरे के लंगा खुद ही आवाज च ईशांत भारद्वाज। ठीक है मंगल जी जरूर होना ले तुसु गीत।
1: थैंक यू जी
0: धन्यवाद। श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गया ना सो चल रही हैं। आइए कार्यक्रम मंच तो है सब श्रोता जरूर जुड़ सकते हैं। नंबर अली मोदी में थी 708-8-8-8-7-0-9-8 पर बहुत सारी जानकारी जो असु तुसु होगी जरूर शेयर करनी इन श्रोतों साझा करनी है ना और सोगी सोगी जानकारी सोगी इंदे जो श्रोता सोगी लगातार जुड़ दें श्रोताओं सो भी तुसोगे असू जरूर कनेक्ट करने हैं। बहरहाल अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हेलो माफ़ कर श्रोताओं डिसकनेक्ट बुझ गया हैं तो आगाज रहा इंतज़ार है जी जनाब आगाज करी लेंदे हैं है ना। आगाज रहा इंतजार बुंदा कि कौन दिन गीत किया सो भूना हाँ कार्यक्रम रहा आगाज किया सो असू जरूर करना शो तुम बोलते ना कि हमेशा बोलता हो रहा गल कि जिंदगी जीना किया सो आसान ना बुंदे आ जिंदगी जीना आसान बनाना पैंदे क्यों करे बहुत सारी गल इग्नोर करे करे बहुत कुछ चुप रह करे, बहुत जगह गया सो शांत रह करे, बहुत जगह गया सो गल्ला जो इग्नोर करे करे, और बहुत जगह गया सो प्यारा सो किशो तो ता जिंदगी किया सो खरी लगती है, ता जिंदगी किया सो आसान लगती है शो तो जीना। बहरहाल चल दिन कार्यक्रम आगो बढ़ दे हिन और लिख रही चल दे तू सब भी श्रोता जो अक्षोता और जुड़े तीन या सो गे कनेक्ट कर दे। नमस्ते जी। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, ठीक ठाक है?
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो बल्ला तो ठीक ठाक ना?
2: शिवजी
0: का नुआला होना। चलिए ठीक है जी, जरूर सुन ले तुसु है ना जी। जी तुंदा भी धन्यवाद है जी, धन्यवाद जुड़ने वास्ते। ठीक है जी, नमस्ते। चलिए शो तो आगाज कर लेंदे कार्यक्रम रहे गीता सो गया, और आगाज तो बाद फिर अन्य जानकारी तू हो गया है जरूर शेयर कर ले, सांझा कर ले।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम इस समय इंती अपनी गप्पा के ना सो चल रही हैं श्रोताओं ताइया कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच जानकारी रा सिलसिला गया सो तुस हो गया है शेयर कर दें इन श्रोतों। प्रदेश सरकार रे आक प्रवक्ता गया सो श्रोताओं दसो कि 15 अगस्त यानी कि दुत्ते गया 15 अगस्त 2026 जो कि असो हमीरपुर जिले रे बटसर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखु के असो संबोधन र प्रदेश वे सभी स्कूल जो कि असो सीधा प्रसारण करो हाशो तो तिन्या वालों आके इतों विद्यार्थी प्रदेश व विकास एवं जन कल्याण जो लेकर के असो मुख्यमंत्री रे दृष्टिकोण और सरकारी प्राथमिकताओं थों भी अवगत के न सो पूछी सकते हैं इन श्रोतों। तो जानकारी व सिलसिला के सोए चले रहने तो सब बन रहे हैं इस समय एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी और लेकर चल दे तू सब भी श्रोता जो कार्यक्रम मंच श्रोतों वे फरमाइश आ रही और मेरे अकेलेगा गीत अरे बोल थी ये श्रोतो ये गीत होना चाहते थी इंदे अक्षोता तो जरूर इस फरमाइश जो भी की सो पूरी कर देना और इतों बाद श्रोतो अगली जानकारी रा पिटारा किया सो खोल देन अगली खबर रा पिटारा किया सो है खोल देन श्रोतो तिथिक इंजॉय करे तो ये प्यारे दे।

শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা 2021 গুরু আর এই কার্যক্রম আরজে সচিন কাপুর সঙ্গে বিলকুল লাইভ হন কর দেন আপনার রেডিও সেট মা তা শ্রোতো আইয়ে কার্যক্রম মঞ্চ আগু বর দেন আর জানকারি রা পিটার আগে শুধু হোগে সাঝা কর দেন শ্রোতো তো সব বন রে সময় রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা সোগে আর সচিন কাপুর কার্যক্রম যে হোস্ট করু করতা হা এয়ার ইন্ডিয়া আর এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস কে সো আপনি সবই পাইলট রা ড্রগ সেবন থ সম্বন্ধিত টেস্ট গিয়া সো করানা লু রা আর সূত্রে দসো অশ্রোতা হুঁ কি এক আদম পিছলে সপ্তাহ ফুকে দিল্লি বিমান রে প্রমুখ পাইলট রি যাঁচ মা তু পতা কি সো 300 ফিট কে সো থলে চলিয়া থু যাজ হা না তা ঠেরে চক্র অন্দর কে সো আবে সবই বে সো বলদে না কি গলতি আক করদা ওর ভুক্তনে কি সো সবই ও পেন্দা হা যায় ফির সো পরিবার মঞ্জ বোয়া যায় ফির সো जड़िया है जॉब कर दे तड़ी बुआ जाए अन्य जगह बुआ है ना तो गलती आग कर रो अभी भुगतना कि असो सब भी हो पैने हैं यानी कि दसना चंदा श्रोता हूँ कि अब प्रमुख सभी पायलट है किया सो मादक पदार्थ है वह सेवन थो पुष्टि भूने बाद किया पुष्टि भूने है श्रोता हूँ कजो कि 4 अगस्त जो कि असो टर्बुलेंस रे कारण फुके दिल्ली उड़ान संख्या ए ई 2379 विमान की असो एयरबेस थो ए 320 अचानक के असो 300 फुट थले चले आ थो श्रोता हूँ इस घटना में कम से कम 24 बनो के ना सो घायल हुए हैं विमान में 837 यात्री और चालक दल व 8 सदस्य सहित कुल 145 मनो के थी है सो सवार थी है जहाज अंदर श्रोता हूँ सूत्र दसो कि उड़ान व प्रमुख पायलट रही जाँच में के असो ड्रग रा सेवन रहा पता के असो चलो हा यानी कि जो मेन पायलट थो तीन है कि श्रोता हूँ सो ड्रग रा सेवन करुआ थो सूत्र रे हवाले थो ये जानकारी है सो तक बिल्कुल सटीक किया सो पुजिया और ये सटीक जानकारी है तो सो तक पहुँचाए हा जो भी मन ओके ना सो घायल हुए हैं कुल तस हादसे में श्रोता और 137 यात्री और चालक दल रे 8 सदस्य कुल 145 मन ओके थी है सो सवार थी अब तिनिया ड्रग रे नशा जरूरत हो एरी वजह सो तसी कुछ पता न लग रहा 300 फुट थल्ले किया सो जहाज चली छू रहा श्रोतो जती हैं 24 मनु के ने सो घायल भी छू रहे अब तो है सोचा श्रोतो कि इस प्रकार हो गए कि सो अगर मतलब सो नशे नशे अंदर कुछ भी बुझ सकता तो कुछ भी तस समय कुछ भी बुझ सकता तो श्रोतो तो 300 फुट थल्ले के चले आता कुछ भी और भी बुझ सकता तो और 145 मनु भी जान ना रखिया सो खतरा थो तब चलिए जानकारी आए तुसु तक पहुँचाए तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो की कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर देन असो की फेसबुक रे माध्यम थो भी बिल्कुल लाइव बन रहे बंदे हिंदे विनय कपूर बड़े भाई अभिनय जी जय श्री राम नमस्ते हर हर महादेव तो है कमेंट में लिखो कर देन अभिनय जी विनय कपूर हिंदे बड़े भाई हिंद और इसी सो गई श्रोता हूँ कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हिन और फरमाइश रहा दौर किया सो असो ज़रूर पूरा करना हा नाले रे फरमाइश किया सो करे हा ता है ज़रूर हुनंदे हिन इंदे श्रोता जो तो सब जुड़ी सकते हिन 708-8-709 पर कॉल करे करे और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हिन श्रोता हूँ बहरहाल बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

0: शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून गुडरो और कार्यक्रम इस समय इंदी अपनी गप्पा कहने सो चल रही इन शतों का या कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं इन शतों और अगली जानकारी होगी कहने सो तू सू जो साझा कर दें तू सब श्रोता वैसे कॉल कर सकते हैं जनाब 7018879 पर नंबर आक मौके फिर शेयर कर लूँ हाँ 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं श्रोता चलते हगू और इन अगले अक और श्रोता के अनुसोस होगी कनेक्ट हुए पूछते हैं कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन नमस्ते जी हेलो
1: नमस्ते जी
0: हाँ जी नमस्कार जी जी कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन अच्छा योल थो कहना जी तुम आवाज नहीं छू जी जी हेलो
1: हाँ जी
0: आवाज नहीं छूँगी तुम्हें माफ़ करा शो तो डिसकनेक्ट करना पैना आवाज़ रही शुकी सो कई वक्त हाँ बुझेगन कि उस साइडों जो कॉलर है सो की कनेक्ट बुना चाहते हैं तेरी साइडों की सो सिग्नल रही शू रही गंदा हर शो तो चलते हैं और अगली जानकारी तू होगी शेयर कर दें शो तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अभी महिला ए टीम की सो ए टीम मेरे बीच की सो धर्मशाला में भूने वाले 4 दिवसीय मुकाबले में दर्शक जो टिकट अरे वास्ते कि असो अपनी जेब ढिली ना करना पैनी हर्षो तो जी बिल्कुल 29 सितंबर तो लेके 2 अक्टूबर तक भूने वाले मुकाबले जो हेरने वास्ते कि असो टिकट ना लगने हर्षो तो दर्शकों रे दर्शकों वास्ते कि जो दर्शक इन हेरने वास्ते तीन वास्ते मैच की असो बिल्कुल निःशुल्क रहना हर्षो तो और दसना चाहता तू सभी जो कि हाँ बिल्कुल निशुल्क मैच किया सो रहना हाँ शो तो आऊँ दसना चाहता है शो तो कि इंडिया ए महिला और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम रे बीच सितंबर में बहु परूपी सीरीज किया सो खेले गाने हाँ शो तो इतिम त्राई T20 त्राई वनडे और 4 दिवसीय मुकाबले के ने सो शामिल हैं शो तो 4 दिवसीय मैच वे मेज़बानी की सो धर्मशाला जो मुड़े हैं शो तो दर्शक जो स्टेडियम में प्रवेश वास्ते कोई भी किसी तरीके वे शुल्क के सो ना देना है और ना ही इतियो लेकर के सो HPCA भी और तो कोई स्थिति स्पष्ट करे है ना HPCA सचिव मनोज शर्मा ये बोलो कि संभव है कि 4 दिन दर्शक कोई प्रवेश शुल्क की ऐसो ना लेना है हालांकि तीन ये स्पष्ट करो है कि मैच निःशुल्क होना है और कोई भी व्यक्ति किया तो सो ठेरा इन्या मैचरा आनंद किया सो ले सकता है तो अगर तुसु भी हेरना मैच और लगता तुसु कि तो आर से निचर आ बिच्चा अंदर तो जरूर गच्छ और मैच रहा आनंद की सो जरूर लिया शो तो 29 सितंबर तो 2 अक्टूबर तक धर्मशाला में किया सो भारत और ऑस्ट्रेलिया ए टीम मारा मैच किया सो अपू में बुना हाँ तो जरूर गान और मैच रहा आनंद किया सो जरूर लैन शो तो जानकारी रहा सिलसिला इन चले रहे ना आरजे सचिन कपूर सो की बने रहे जुड़े रहे आसू सो की शो तो है लेकर चल दे तू सभी जो फरमाइश रहा दौर चले रहना हर शो तो लेकिन चलते तू सभी श्रोता जो इस प्यारे दे गीतारी कनारी गीतारी फरमाइश की है श्रोताओं सो राहुल रिछूरे जो कि खनियारे निवासी हैं उन्हें दिन तीन प्यारे दे गीत

शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा गया सो बिल्कुल लाइव चल रही है तुम्हें वीडियो सेट में तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम में कॉल जरूर कर सकते हैं 7018 8 8 7 0 9 8 पर नंबर आक मौके फिर शेयर करना हाँ 7018 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत जरूर होने सकते हैं श्रोता अपने क्षेत्र की जानकारी साझा कर सकते हैं जी हाँ अह तुस वो गीत नहीं जानकारी के अनुसार साझा कर करते हैं है ना तो पिटारा ही खोलते रहना श्रोतों जानकारी रहा चलिए फिलहाल तय है तुस वो थोड़ा करी और आगू किया सो लिख रही गंदे हैं और इन श्रोता कनेक्ट हो चुक दी थी लेकिन डिसकनेक्ट के अनुसो बुझ गया हैं चलिए है थोड़ी करी आगू चल दिन और अगली जानकारी तो सूखी की सो शेयर कर दें सो तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के सो हमीरपुर जिला में चयनित है अति गरीब परिवार जो कि सो 16 अगस्त जो नदौन में सीधा संवाद किया सो तीन हो गए करना हा और सुखविंदर सिंह सुखू मुख्यमंत्री परिवार थो त्यारी वास्तविक जरूरत समस्या और सरकार थो अपेक्षा भी जानकारी किया सो लेने हैं त्यारी मांग और जरूरत रे आधार पर प्रदेश में 6.78 लाख अति गरीब परिवार रे आर्थिक उत्थान रे वास्ते योजना और सुविधा व खाका के आसो तैयार करना है श्रोतों ठेरे आधार पर किया ऐसे परिवार जो जीवन में स्तर के सो ऊपर चुकना है त्यारा अति गरीब परिवार जो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना में शामिल किया सो भूना हा करना हा सरकार है कि श्रोतों सो सब तो गरीब परिवार री पहचान 8 चरणा में किया सो करे है श्रोतों सरकार रा प्रयास है कि योजना ऊपर थो थोपने भी बजाय किया सो इन्या परिवार रे वास्तविक आवश्यकता रे आधार पर तैयार हुआ तो ज़्यादा बेहतर है इतों सरकारी सहायता सीधा जरूरतमंद परिवार तक पुजने हा मुख्यमंत्री है कि असो नदौन संवाद रे बाद इन्या परिवार थों प्राप्त सुझाव और जरूरत जो सरकारी आगामी योजना में शामिल करने भी दिशा में कम किया सो करो हर्षतों तेरा उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है बल्कि परिवार जो स्थायी तौर पर आत्मनिर्भर बनाने वास्ते किया सो जरूरत आधारित सरकारी कार्यक्रम चलाना हा जानकारी रहा सिलसिला की श्रोतों सो ये चली रहने तो ये सब बन रहे समय आ जाए सचिन कपूर सो गे लेकर चलते हैं तो सभी जो अब जानकारी रे इस थोड़ी देर बाद फिलहाल लेकर ही चल रहे हैं तो इस गीतारी किनारी बनी रहे तो ये सब आ जाए सचिन कपूर सो गे गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे

सदा एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इस वक्त हिंदी अपनी गप गए सो चल रही हिन कार्यक्रम में थोड़ा करी हगू बढ़ दें हिन छोतों और अगली जानकारी तुस होगी कि असोरू तुस वो रूबरू करवंदन अगली जानकारी सोगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल डॉक्टर धनी राम शांडे लेके सो हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड रे निर्देशक मंडल अभी सत्तवी की सो बैठक री अध्यक्षता री और थो स्वास्थ्य ढांचे जो सुदृढ़ करने रा रूपरेखा के सो तैयार करे है सो तो बैठक रे दौरान स्वास्थ्य मंत्री के सो दवाई और चिकित्सा उपकरण री खरीद प्रक्रिया जो कि सो सुव्यवस्थित करने वास्ते कि सो मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन रे प्रयास री सराहना किया तारीफ किया सो तो सो करे है तिन्या वल्लों के कॉरपोरेशन राज्य प्रमुख खरीद एजेंसी है जो मेडिकल कॉलेज और सरकारी स्वास्थ्य संस्थान रे वास्ते किया सो जरूरी दवाई सर्जिकल सामग्री और उपकरण खरीदी करी किया सो वितरित कर दिया यानी कि बन दिया तिन्या वल्लों आशा तो हूँ कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र जो मजबूत और आधुनिक बनाने वास्ते किया सो लगभग 2300 करोड़ रुपये वह बजट किया सो खर्च करू कर दिया अस्पताल में मौजूद 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीना और उपकरण जो चरणवृद्ध तरीके थो हटाया किया सो गच्छू करता है इन्या पुरानी मशीना भी जगह किया सो अत्याधुनिक मशीना स्थापित किया सो भुचू कर दी हिन जति थो मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन अहम भूमिका किया सो निभाऊ करता है आशो तो जानकारी रहा सिलसिला चले रहना आर जैसे सचिन कपूर सोगे और कार्यक्रम तो सब हुनो करते हिन हिंदी अपनी गप्पा कहियो कि अपने आर जे वीडियो जो कि सचिन कपूर सोगे ता चलिए थोड़ा करे आगू और बढ़ दे हिन शो तो और लेके चल दे तू सभी शो तो जो इस गीत तारीख नारी बनी रहा जुड़ी रहा अपने गाद्य कार्यक्रम सोगे इस नाचीज आर जे सचिन कपूर सोगे

कुरेंद्रीय और माँ बाप री सेवा जरूर कर श्रोतों का, जो कि माँ बाप तो मुट्ठा गया समझो ना रखता इस दुनिया में कोई हा, तो त्यारी सेवा भरपूर करा जरूर करा। अगर माँ बाप एक ऐसा शख्स ने तुंदी लाइफ में जो तुंदा बुरा किया सो कदी ना चाहते हैं, तुंदा खरा चाहते हैं और तुंदा तुसु हमेशा किया बच्चे जो हमेशा किया सो खुश हेरना चाहते हैं, सो माँ बाप री सेवा जरूर करा श्रोतो। और पहला कर्तव्य ही पहला धर्म ही किया सो माँ बाप री सेवा करना है श्रोतो, सो जरूर करा। परिवार जो खुश रखा श्रोतो, हाँ अपने आप जो खुश रखा, शरीर रा ध्यान रखा, प्रकृति रा ख्याल रखा। इन शब्द था सचिन कपूर ले लेनो तुसु थो इस कार्यक्रम थो इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

0: Audio Jungle.
1: बहुत स्वागत है। चलिए समाचार अब विस्तार से आपके साथ हम साझा करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को इस ताजा खबर की ओर। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। 3 नई इलेक्ट्रिकल बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी श्रोताओं तथा लोगों को अधिक बेहतर सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। हाल ही में शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने SDM कार्यालय परिसर में इन 3 इलेक्ट्रिकल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन बसों का संचालन धर्मशाला से तत्वानी, बंडी, रैलू, लंच, हरनेरा सहित विभिन्न ग्रामीण रूटों पर जो है वो किया जाएगा। इन नई बस सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जो है सुविधा प्राप्त होगी, आने जाने के लिए सुविधा जो है वो प्राप्त होगी श्रोताओं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों की निवासियों को राहत मिलेगी जहां सार्वजनिक परिवहन की सीमित विकल्प उपलब्ध हैं श्रोताओं। विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है और लगभग 297 इलेक्ट्रिकल बसें HRTC के बेड़े में जो है वो शामिल की जा चुकी हैं, जो हिमाचल में स्वच्छ एवं हरित परिवहन को नई दिशा प्रदान करेगी श्रोताओं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने सभी पायलटों का ड्रग सेवन से संबंधित टेस्ट कराएगी। सूत्र

उन्होंने बताया कि ये कदम पिछले सप्ताह फुकेत दिल्ली विमान के प्रमुख पायलट की जांच में उसके मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि होने के बाद उठाया गया है। 4 अगस्त को टर्बुलेंस के कारण फुकेत दिल्ली उड़ान संख्या AE2379 2379 का विमान एयरबेस A320 अचानक 300 फीट नीचे आ गया था। श्रोतों, इस घटना में कम से कम 24 लोग जो हैं वो घायल हो गए थे। विमान में 137 यात्रियों और चालक दल के 8 सदस्य सहित कुल 145 लोग सवार थे। सूत्रों ने बताया कि उड़ान के प्रमुख पायलट की जांच में ड्रग्स के सेवन का पता जो है वो चला है, जो कि बेहद शर्मनाक भी है और थोड़ा सा खौफनाक भी ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि 300 फीट नीचे जाकर वो संभल गया। अगर सोचिए, संभलता ही नहीं वो विमान तो लगभग 145 यात्रियों की जो है वो मौत हो जाती। श्रोताओं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शिंडल ने हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक मंडल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की और स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने की रूपरेखा तैयार की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को जो है वो सुव्यवस्थित करने के लिए मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन राज्य के प्रमुख खरीद एजेंसी है, जो मेडिकल कॉलेजों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए ज़रूरी दवाइयां, सर्जिकल सामग्री और उपकरण खरीद कर वितरित करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रही है। अस्पतालों में मौजूद 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों को बाहर किया जाएगा और उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से जो है वो हटाया जा रहा है। श्रोताओं, इन पुरानी मशीनों की जगह अत्याधुनिक मशीनें यानी कि नई मशीनें स्थापित की जा रही हैं। श्रोताओं, और साथ ही बताना चाहता हूँ, जिसमें मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन अहम भूमिका निभा रहा है। श्रोताओं, बताना चाहेंगे, बल्क ड्रग पार्क की तर्ज पर प्रदेश में 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। श्रोताओं, उद्योग विभाग ने भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य में नालागढ़ और ऊना के टहलीवाल में बनने वाले 2 औद्योगिक पार्कों के परियोजना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। इन दोनों पार्कों की अनुमति लागत जो है वो 234 करोड़ रुपए की है। श्रोताओं, वहीं कांगड़ा ज़िला के कदरोड़ी और सोलन ज़िला के कंडाघाट में भी जो है वो औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सितंबर से पहले इन परियोजनाओं स्वीकृत के लिए भेजा जाना है। श्रोताओं, देश में 100 औद्योगिक पार्क जो हैं वो बनने जा रहे हैं, इसमें से 4 हिमाचल में बनेंगे। श्रोताओं, 4 हिमाचल के हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला ए टीमों के बीच धर्मशाला में होने वाले 4 दिवसीय मुकाबलों में दर्शकों को टिकट के लिए जो है वो जेब ढीली नहीं करनी होगी। 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाले मुकाबले को देखने के लिए टिकट नहीं होगा। श्रोताओं, देखने के लिए टिकट जो है वो नहीं खरीदनी पड़ेगी। दर्शकों के लिए मैच निःशुल्क रहेगा। इंडिया ए महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच सितंबर में बहु प्ररूप सीरीज जो है वो खेली जानी है। श्रोताओं, इसमें 3 T20, 3 वनडे और 1 4 दिवसीय मुकाबला शामिल है। 4 दिवसीय मैच की मेज़बानी धर्मशाला को मिली है। दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश के लिए बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। श्रोताओं, कोई भी शुल्क जो है वो नहीं देना होगा। इसे लेकर HPCA की ओर से जो है वो स्थिति स्पष्ट की गई है। श्रोताओं, HPCA सचिव मनोज शर्मा ने कहा कि संभव है कि 4 दिन दर्शकों से कोई प्रवेश शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। हालाँकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैच निःशुल्क होगा और कोई भी व्यक्ति जो है वो आनंद ले सकता है मैच का धर्मशाला स्टेडियम में आकर। श्रोताओं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिला में चयनित अति गरीब परिवार से 16 अगस्त को नदौन में सीधा संवाद करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री परिवारों से उनकी वास्तविक जरूरतों, समस्याओं और सरकार से अपेक्षाओं की जानकारी लेंगे। उनकी मांग और जरूरतों के आधार पर प्रदेश के चयनित 1.78 लाख अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए योजना और सुविधाओं का खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। श्रोताओं, उसके आधार पर ऐसे परिवारों को जीवन स्तर ऊपर उठाया जाएगा। श्रोताओं, अति गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना में शामिल किया जाना है। सरकार ने सबसे गरीब परिवार की पहचान 8 चरणों में की है। श्रोताओं, सरकार का प्रयास है कि योजनाएं ऊपर से थोपने की वजह जो है वो इन परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर खाका जो है वो तैयार किया जाए। इससे सरकारी सहायता सीधे ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंच सकेंगी। मुख्यमंत्री के नदौन संवाद के बाद इन परिवारों से प्राप्त सुझावों और ज़रूरतों को सरकार की आगामी योजनाओं में शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि परिवारों की स्थायी तौर पर आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरत आधारित सरकारी कार्यक्रम चलाना है। तो इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: भाभी, उस वक्त आपने जो कुछ कहा गुस्से में कहा।
1: हनी, हनी फील आफ्टर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: कभी उसे नूर

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते। और हाँ श्रोताओं, पहुंच चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, पूरा दो घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इस सफ़र को थोड़ा सा और हसीन और रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं, आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा।
1: शोधो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। इन जानकारियों में थोड़ा सा शोधो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो लम्हा पास है उसी में आबाद रहो। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओ, जो लम्हा हमारे पास है उसे खूब इंजॉय करना चाहिए, उसे जीना चाहिए। जो लम्हा एक बार निकल गया फिर से वापस नहीं आता है, यादें ही रह जाती हैं हमारे पास और वही लौट कर वापस आती हैं। इसलिए हर पल को हसीन बनाने की कोशिश करें, अपने आप को व्यस्त रखिए और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा हम कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो मंचन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपने दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओ, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज है 14 अगस्त, हम सभी जानते हैं, और भारत और विश्व के इतिहास में आज का दिन महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान रखता है। इस दिन 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान ने अपना जो है इसे मनाया भी था, जबकि भारत का संविधान सभा का ऐतिहासिक मध्यरात्रि सत्र आयोजित हुआ था। आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर थोड़ा सा नज़र डालें श्रोताओं, तो 1947 में पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र होकर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और साथ ही साथ 1947 में भारत के विभाजन के दौरान दर्दनाक विस्थापन और संघर्ष की याद में इस दिन को भारत में विभाजित भविष्यिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ अभी और भी हम लेकर आए हैं, उन्हें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आज कार्यक्रम में हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में बात कर रहे थे। श्रोताओ, तो भारत में 1947 के बंटवारे के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और विस्थापना का दर्द सहने वाले लोगों की याद में ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ सन 1947 में ठीक मध्यरात्रि को, जैसे हमने पहले भी बात की कि सत्ता के हस्तांतरण के साथ पाकिस्तान का स्वतंत्र राज्य बन गया था और 1947 में ही इस आज ही के दिन भारत के विभाजन की प्रक्रिया को, सरहदों का दर्द देश ने झेला था। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल अपनी बातों को यहीं पर देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं। तो आइए कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। उप निदेशक उच्च शिक्षा कांगड़ा अजय सिंह संब्याल ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया है कि जिला के संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग संस्थान को हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र नियम 2026 के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र पंजीकरण और विनियमन नियम 2026 लागू किया जाएगा और उपायुक्त हेमराज भैरवा इससे जिला स्तरीय निजी कोचिंग केंद्र समिति कांगड़ा की अध्यक्ष है। उन्होंने ये बताया है कि जिले में संचालित ऐसे सभी निजी कोचिंग संस्थान जहां 50 या इससे अधिक विद्यार्थी कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण करवाएं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। तो अभी और भी हम साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में मिलकर एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो विंजन धर्मशाला।

तो इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और बातचीत आपके साथ करते हैं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी घरेलू जिम्मेदारियां या यूं कह सकते हैं कामकाजी जिम्मेदारियों से थक हार जाते हैं। उस समय मन करता है सैर करने के लिए, कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, और घूमना फिरना फिर आस्था से जुड़ा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को सुकून भी देता है। और भक्ति भी जीवन में बेहद ज़रूरी होती है, भक्ति के बिना जीवन चलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ पल भगवान को भी देने चाहिए, उन्हें भी याद करना चाहिए। और घूमने फिरने की बात से श्रोता मुझे याद आ गया कि आजकल सावन के मेले लगे हुए हैं और सावन के मेलों में हम भोलेनाथ के दर्शन तो करते ही हैं, साथ ही साथ अगर अपने आसपास के मेलों की बात की जाए तो रानीताल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नाग मेले, जमुआला नाग मंदिर में सावन के मेले जो है लगभग 2 महीने तक चलते हैं। और इन मेलों में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के अंतर्गत रानीताल के पास चेलिया गांव में स्थित श्री शेष नाग मंदिर में श्रावण के महीने में 2 महीने तक भव्य मेला लगता है। और मेले में बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए और नाग देवता का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचते हैं। तो श्रोताओं, आज आपको घर बैठे ही हम नाग देवता के मंदिर की सैर करवा देंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने तो वहां जाकर माथा भी टेका होगा, कुछ जाने वाले होंगे वहां पर माथा टेकने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की मान्यता होती है कि वहाँ जाने से जो है नाग देवता की कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद बना रहता है। और जो लोग किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं उनको हम यहीं बैठे नाग देवता के मंदिर की सैर करवाते हैं। तो थोड़ा सा फिर से कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोता, हम मेलों की सैर कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको भी करवा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है श्रोता, हमें किसी जगह के बारे में पता नहीं होता है, सुनते सुनाते उस जगह के बारे में पता लगता है। और हम में से बहुत सारे श्रोताओं को इस जगह के बारे में पता भी होगा और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। तो श्रोताओं, थोड़ी सी सैर तो हम कर रहे हैं, सैर के जरिए बहुत सारी बातें भी हमारे सामने आती हैं। ये जो मंदिर की बात है श्रोताओं हम कर रहे हैं, ये मंदिर कांगड़ा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर होशियारपुर धर्मशाला हाईवे के पास स्थित है। और सावन के पवित्र दिनों और विशेषकर सावन सोमवार को नाग पंचमी के दौरान नाग देवता जो है खुद भक्तों को दर्शन भी देते हैं। चमत्कारी मान्यता के अनुसार श्रोताओं, मान्यता ये है कि यहाँ के दरबार में सांप या बिच्छू के काटे व्यक्तियों को लाने और मंदिर की मिट्टी का लेप लगाने से जहर का असर खत्म हो जाता है और भक्त जो है इस चमत्कारी मिट्टी को अपने घरों पर ले जाकर पानी में घोलकर जो है अपने घर के आसपास छिड़कते हैं ताकि जहरीले जीव घर के पास ना आए। तो श्रोताओं, और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन जानकारियों के साथ साथ हमें कार्यक्रम में आपको सुनवाने होते हैं प्यारे प्यारे गीत। तो ये फिर से कार्यक्रम में रुकते हैं और सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गीत।
1: कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए कोई खिलौना।
0: किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर, फिल्म का ये प्यारा

जी हाँ श्रोताओ, मनोरंजन के साथ साथ हम फिर से थोड़ी सी सैर और कर लेते हैं और सुनते सुनाते बहुत सारी चीज़ों का भी हमें ज्ञान होता है, तो ज्ञान प्राप्त करना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम बात आज नाग मंदिर की कर रहे थे और सैर भी कर रहे थे। श्रोताओ, नाग मंदिर जो है आस्था, संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मेला विशेष रूप से सावन के सोमवारों और नाग पंचमी के अवसर पर अधिक प्रसिद्ध होता है, लेकिन इन दिनों में लोग वहाँ पर ज़रूर जाते हैं माथा टेकने के लिए। सावन मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँचते हैं और साथ ही साथ मान्यता ये है कि इस अवधि में नाग देवता की पूजा करने से परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी वर्षा, खेती की उन्नति और सर्प भय से रक्षा की कामना भी पूरी होती है। साथ ही साथ श्रोताओ, सावन के पूरे महीने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भक्ति कीर्तन आयोजित होते हैं और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ रहती है। नागपंचमी के दिन मेलों का मुख्य आकर्षण होता है। इसमें श्रद्धालु दूध, जल, फूल, बेल पत्र और प्रसाद अर्पित करते हैं। स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंचते हैं और सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में भाग भी लेते हैं। तो श्रोताओ, ये तो थी जानकारी। जानकारियों के साथ साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का एक और अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, ये कार्यक्रम में कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने बताया है कि देहरा की ब्यास नदी पर स्थित पुल की सुरक्षा की दृष्टि गत 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक भारी वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि निर्णय राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ पुल की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया गया है और साथ ही साथ पुल की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा की वजह से ये फैसला लिया गया है। उपायुक्त ने बताया है कि देहरा ब्यास पुल के अधिकतम 19 मीटर टन तक भार वाले वाहनों को ही पुल पार करने की अनुमति होगी, जबकि इससे अधिक भार वाले वाहनों की आवागमन के लिए चंबापत्तन तथा नादौन पुल का विकल्पित मार्ग के तौर पर उपयोग करना होगा। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम यहाँ पर रोकते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुँचाते हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ साईं के साथ बजने को है और अब कार्यक्रम में जो है समाचारों का समय हो रहा है, तो आइए चलते हैं समाचारों की ओर।

स्टेशन ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं।

तो इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आ चुके हैं अगली जानकारी लेकर। अब थोड़ा सा आपके दिमाग पर ये जोर पड़ रहा होगा कि अगली जानकारी किस चीज़ की है। अभी सावन का महीना चला है श्रोताओं, हम सभी अपने आसपास के मंदिरों में माथा टेकने जाते हैं और जो है भगवान की दया दृष्टि कृपा दृष्टि हर कोई चाहता है। कोई स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है, अच्छे जीवन साथी के लिए कोई करता है, कोई सुख समृद्धि के लिए करता है। सबकी अपनी अपनी इच्छाएँ होती हैं, अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से हम लोग भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं और उनसे अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना पूजा अर्चना करते हैं। और जो पूजा अर्चना के लिए हमें जाना पड़ता है मंदिर में, वैसे तो कहा जाता है कहीं भी बैठकर हम सच्चे मन से भगवान को याद करें तो वो हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और कबूल भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि कहीं घूम फिर के आया जाए, मंदिरों को देखा जाए, क्योंकि मंदिरों के पीछे भी कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई राज छिपा होता है। बहुत सारे हमारे पुराने मंदिर हैं जिन्हें देखने का भी एक अलग ही मज़ा होता है और श्रावण मास पर घर बैठे ही हमें दिव्य मंदिरों के दर्शन हो जाएं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है श्रोताओं। तो थोड़ा सा हम आपको लिए चलते हैं अपने नज़दीकी बैजनाथ मंदिर की ओर। श्रोताओं, बैजनाथ मंदिर की देवभूमि में चप्पे चप्पे पर अनेक पुरातन तथा ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जो किसी न किसी कवदियंतियों अथवा जनश्रुतियों से जुड़े होते हैं। यहाँ के मेले, उत्सव तथा त्यौहार पुरातन सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं को अपने साथ लिए हुए हैं। वैसे तो ये देवभूमि अनेक देवताओं तथा ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि है, पर इस श्रृंखला में धर्मशाला से लगभग 56 किलोमीटर दूर, पालमपुर से 16 किलोमीटर तथा समुद्र तल से ऊंचाई 1250 पर अवस्थित बैजनाथ शिव मंदिर है। तो श्रोताओं, इस मंदिर की भी हम आपको सैर करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कार्यक्रम में हमें रुकना है और आप सब तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को और खूब सारा इंजॉय भी करें।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम रुख करते हैं अपनी सैर की ओर, क्योंकि बहुत समय हो गया है। कई बार होता है कि जब हम सैर पर निकल जाए तो थोड़ा रास्ते में रुकना पड़े तो थोड़ा अजीब लगता है, मन करता है फटाफट से वहाँ पहुँचा जाए और देखा जाए कि क्या है वहाँ की खासियत। तो खासियत तो हर मंदिर की अपनी अपनी अलग अलग होती है। और देश विदेश की अगर हम बात करें श्रोताओं, तो देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था तथा श्रद्धा का केंद्र है हमारा शिव मंदिर बैजनाथ का। वर्ष भर यहाँ पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और अगर हम बात करें महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि और श्रावण मास में बैजनाथ मंदिर में शिव भक्तों का महासैलाब तो देखते ही बनता है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यहाँ मेले देश के कोने कोने से शिव भक्तों को आकर्षित करते हैं। और साथ ही साथ 19वीं शताब्दी में निर्मित शिखरकार शैली के इस मंदिर में पुरातन शिवलिंग का पूजन होता है। बैजनाथ का प्राचीन नाम कीरग्राम है और मंदिर से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार मयूक और

0: आहुक नाम के दो व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो शोध कार्यक्रम में और भी जानकारियां हैं, लेकिन उसे हम बताएंगे गीत के बाद। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: AI powered personal music teacher.

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आज का गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। स्थानीय जानकारियों की ओर रुख करें तो चंबा जिला में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध श्री मणि महेश यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए मणि महेश न्यास द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस वर्ष श्री मणि महेश यात्रा 4 से 9 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। श्रद्धालु यात्रा पर जाने से पूर्व मणि महेश न्याय के ऑनलाइन पोर्टल https://www.maniamasheta.hp.gov.in/register पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने बताया है कि श्री मणि महेश यात्रा में प्रतिवर्ष देश भर के लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन तथा पवित्र मणि महेश झील में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाओं के प्रबंधन की दृष्टिगत इस वर्ष मणि महेश न्यास द्वारा प्रति दिन 5,000 श्रद्धालुओं की सीमा निर्धारित की गई है। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आप सब तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो धर्मशाला के साथ।

इसी गीत के साथ है श्रोताओ, फिर से हम कार्यक्रम में वापिस आ चुके हैं और हम कर रहे थे बैजनाथ की सैर और अपनी श्रोताओं को भी करवा रहे थे। श्रोताओं, बैजनाथ मंदिर की पौराणिक कथा अनुसार त्रेता युग के चार वेदों में ज्ञाता रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। अतः उसमें अपना जो है सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर शिव को अर्पित करना शुरू किया। दसवां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण का हाथ पकड़ लिया। भगवान शिव ने उनके सभी सिरों को पुनर्स्थापित कर दिया और रावण को वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ, अपने दो भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे अत्यंत बलशाली बना दें। शिव जी के तथास्तु कहा और लुप्त हो गए। लुप्त होने से पूर्व शिव जी ने अपने शिवलिंग स्वरूप दो चिन्ह रावण को देने से पहले कहा कि उन्हें जमीन पर कदापि मत रखना। जब रावण लंका को चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र यानी बैजनाथ में पहुंचा तो उसे लघु शंका लगी। कवदयंती के अनुसार उसने बैजू नाम के गवाले को सब बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिया और लघु शंका निवारण के लिए चला गया। शिवजी की माया के कारण बैजू उस शिवलिंग के वजन को अधिक देर तक ना सह सका और उसने उसे धरती पर रख दिया और अपने पशु चराने चला गया। इस प्रकार दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। इस मंजूषा में रावण ने दोनों शिवलिंग रखे थे। इस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह वैजनाथ के नाम से जाना गया। तो श्रोताओ, ये तो थी जानकारी। अभी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि जब तक पूरी कहानी का पता नहीं चलता है, पूरी बात को नहीं हम सुनते हैं, तब तक समझ नहीं आता है। पूरी बात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन श्रोताओ बीच बीच में हम आपका करवाते रहते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो फिर से हम आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शोध इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला में कुछ जानकारियां और आपके लिए हम लेकर आए हैं, उन्हें भी आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में साइंस कॉलेज, एलआई तथा स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय और एम्स स्तर के आयुर्वेदिक संस्था की घोषणा की और सरकार उच्च शिक्षा के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बना रही नीति। पड़ोसी राज्य BBMB के बकाया भुगतान के को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किए हैं ताकि शिकाऊ परियोजना पर MOU होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 80 करनाल भूमि चिन्हित की जा चुकी है और परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में एलाइड तथा स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिला में 74 एकड़ भूमि पर एम्स स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। तो श्रोतो ये तथी जानकारियाँ। अब कार्यक्रम में आप सभी को सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का ये गीत। इस गीत को हमने लिया है एक महल हो सपनों का, फिल्म से। तो आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

तो इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला में, यानी अपने स्टूडियो में और अपने विषय की ओर। तो सावन महीने में बैजनाथ की बात हम कर रहे हैं और ये बात तो बिल्कुल बनती ही है, क्योंकि जब सावन महीना लगता है तो मेले वहाँ लगते हैं और हम इन मेलों का एंजॉय लेने के साथ साथ शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और ये काफ़ी महत्व भी रखता है। और इस बार भी श्रद्धालुओं को जलहरी के माध्यम से पूरे दिन पवित्र शिवलिंग पर जल अर्पित करने की सुविधा मिल रही है। वहीं बिनवा खड्ड के किनारे अवस्थित खीर गंगा घाट, जो कि धार्मिक स्थल है, सावन महीने में इसमें स्नान करने की परंपरा और सदियों से चली आ रही है। और ये मंदिर न्यास में महिलाएं और पुरुषों के स्नान करने के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। मंदिर के शरणार्थ हेतु प्रातःकाल ही लंबी लंबी कतारों में भक्तजनों को देखा जा सकता है। और भगवान शिव के बिल पत्र सबसे प्रिय होते हैं, अर्पित करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी धारणा है कि मंदिर में सुबह शाम आरती का भव्य और अलौकिक दृश्य तो देखते ही बनता है। तो श्रोतो, देखिए घर बैठे ही हमने आपको शिव मंदिर की सैर तो करवा दी और इसी सैर के साथ फिर से हम कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस तरह से गीत के बाद कार्यक्रम में हम फिर से वापस आ चुके हैं लेकर जो है अपनी ढेर सारी जानकारियाँ। और आज के कार्यक्रम में खैर हमने आपके साथ जानकारियाँ भी काफ़ी सारी साझा की हैं और हमें ये उम्मीद रहती है कि आपको वो जानकारियाँ पसंद भी आई होंगी और आती भी हैं, क्योंकि हम आपको घर बैठे ही सैर करवा देते हैं हर जगह की। और आजकल की सैर तो वैसे भी बनती है क्योंकि सावन का महीना लगा है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए, जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो शिव भगवान पूरी करें। और इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम में समय हो गया है, रात्रि के 7:45 होने को है। और अब आपको हम लिए चलेंगे समाचारों के लिए शिमला की ओर, तो आप कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: तो ये सब
5: हमको मंडी जाना है, ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
5: हैं,
6: दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ,

0: शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
1: वही जो आप किया करते थे।
0: कौन सी?
1: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

वह गौरवपूर्ण दिवस है जब असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान के फलस्वरूप देश ने स्वतंत्रता प्राप्त

0: सदैव हमारी प्रेरणा बना रहेगा। स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और संकल्प का भी दिन है। स्वतंत्रता के अमृत फल को सुरक्षित रखना और राष्ट्र को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे ले जाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। आज आवश्यकता है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। भारत आज विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश भी अपनी विशिष्ट क्षमताओं, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभाशाली मानव संसाधन का बल पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हमें विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता, नवाचार, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देनी होगी। इस वर्ष 9 से 17 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति की भावना को जन जन से जोड़ने के साथ साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी राष्ट्र चेतना और मातृभूमि के प्रति सम्मान को और सुदृढ़ करता है। मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वे इस अभियान में उत्साहपूर्ण भाग लें और राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को और मजबूत करें। हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए हमें सामूहिक रूप से नशा मुक्त हिमाचल, स्वच्छ एवं हरित हिमाचल, सामाजिक समरसता और जन कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाना होगा। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें शिक्षा, कौशल, खेल, नवाचार और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। पर्यावरण संरक्षण भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल की जो प्राकृतिक संपदा केवल हमारी धरोहर ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐसे हिमाचल के निर्माण का संकल्प लें जो स्वस्थ, शिक्षित, आत्मनिर्भर, समरस और पर्यावरण की दृष्टि में समृद्ध हो तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं पुनः समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप सुन रहे थे माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री कविंद्र गुप्ता का प्रदेशवासियों को संबोधन। ये प्रसारण आकाशवाणी के FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी शिमला है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संबोधन।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, हमारा महान देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस शुभ अवसर पर हम उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और कुर्बानियाँ दी। धामी गोलीकांड, पुझोता आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन तथा स्केत सत्याग्रह जैसी घटनाओं ने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। प्रदेश के अनेक वीर सपूतों ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे प्रदेश के लोगों ने देश की एकता

और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिया है। कम आबादी के बावजूद हमारे प्रदेश के जवान भारी संख्या में सैन्य बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि वीर नायकों को 4 परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देश का पहला परमवीर चक्र भी कांगड़ा जिला से संबंधित मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। उनके अलावा कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर संजय कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आपकी सेवा में 3 वर्ष और 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास किया है। सत्ता संभालते ही हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। आज मैं साफ करना चाहता हूँ कि हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है। जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार बिना मांगे सहायता पहुँचाए तो यही व्यवस्था परिवर्तन है। जिसकी समाज में कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ बनकर सरकार उसके साथ खड़ी हो, यही व्यवस्था परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संकल्प को धरातल पर साकार किया है। अनाथ बच्चों, विधवा बहनों और एकल महिलाओं, किसानों, बागवानों तथा युवाओं के लिए अनेक योजनाएं तैयार कर उन्हें लागू किया गया है। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है और उनका जीवन बदल रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक संकट की चुनौती को पार करते हुए अब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,14,952 रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 2,83,626 रुपये हो गई है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने और प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हम हर मंच पर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अदालत के माध्यम से जीती लड़ाइयां से प्रदेश को अपने हक वापस मिलने शुरू हुए हैं। कड़छम बांगटू परियोजना में मुफ्त बिजली के रूप में हमारा हिस्सा 12% से बढ़कर 18% हो गया है, जिससे हर साल 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। जबकि पूर्व सरकार ने 1.5 साल तक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती ही नहीं दी, लेकिन हमने इसकी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके अधिकार वापस दिलाए। इसी तरह वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का मालिकाना हक वापस लेने के मामले में 23 सालों से चल रही लड़ाई में भी हमने जीत हासिल की है, जिससे प्रदेश के खजाने में 450 करोड़ रुपए आए हैं। इस फैसले से प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। हमारी सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में भी बड़ी सफलता हासिल की है। इस परियोजना का काम पूरा होने पर हिमाचल को बिजली के रूप में हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिससे प्रदेश को लगभग 600 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होगी। पूर्व सरकार ने इस मामले में प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया था। अगर मैं इस मामले में सख्त रुख नहीं अपनाता तो राज्य पर 800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता। हम शानन विद्युत परियोजना को फिर प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल प्रदेश के लंबित 7200 करोड़ रुपए के बकाए की वसूली के लिए भी लगातार लड़ाई जारी है। इस दिशा में हिमाचल को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इसी तरह चंडीगढ़ में प्रदेश के 7.19% हिस्से के लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार कभी भी प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी और हम लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी चोर दरवाजों को
बंद करने का प्रयास किया है। हम हर उस चोर दरवाजे को बंद कर रहे हैं जहां से प्रदेश की संपदा को लूटा जाता रहा है। हमारी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हम साफ नियत से प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही है। हमारी सरकार का साफ संदेश है, कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पिछली सरकार ने बद्दी में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर करीब 5,000 बीघा जमीन कोड़ियों के भाव अपने मित्रों को बांट दी। इसी तरह हिमकेयर योजना में पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन जैसे ऐसे बिल बनाए गए जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते हैं, या प्रदेश की जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जब तक ऊपर से किसी का संरक्षण ना हो तब तक प्रदेश की संपदा की ऐसी लूट नामुमकिन है। इसलिए पिछली सरकार को इन मामलों पर प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है। हमारा मानना है कि जो व्यक्ति ईमानदार है उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि किसी ने प्रदेश की जनता का पैसा लूट कर संपत्ति बनाई है तो उस संपत्ति को जब्त कर गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटा जाएगा। हमारा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हक है, जिन्हें किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने जब सत्ता संभाली थी तो वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश पर 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां भी पिछली सरकार छोड़कर गई, लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाया और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 1952 से संविधान के आर्टिकल 275/1 के अंतर्गत प्रदेश को मिल रही 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के RDG को बंद कर दिया। केंद्र सरकार का इरादा था कि हमारा राज्य इस आर्थिक संकट से उभर नहीं सके, लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश इस वित्तीय संकट से बाहर आ चुका है। हमारे प्रयासों से आज प्रदेश आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह बहुत खेद की बात है कि केंद्र सरकार के नेता बार बार यह टिप्पणी करते हैं कि हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनों का वेतन नहीं दे पा रही है। मैं साफ शब्दों में उन्हें कहना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ऐसा सिर्फ एक बार 6 दिनों के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश अब अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि 65 से 70 साल के पेंशनरों का पूरा एरियर हमने दे दिया है और धीरे धीरे बाकी बकाया भी दे दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, यह पहली बार है कि हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया है। पहली बार अच्छी शिक्षा के लिए घर के नज़दीक CBSE स्कूल शुरू करने की पहल की गई है। प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू किया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब तक 24,000 से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर CBSE स्कूलों में दाखिला लिया है। इन स्कूलों में प्रदेश सरकार केवल 2,000 फीस ले रही है, जबकि प्राइवेट CBSE स्कूलों में 50,000 से अधिक फीस वसूली जाती है। CBSE स्कूलों में 80% मेरिट के साथ अध्यापक चयनित होकर आए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब सरकारी कर्मचारी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तब मजबूत होगी जब गांव में रहने वाले मेरे भाई बहन घर पर ही 20 से 30 हज़ार रुपये कमाएंगे। प्रदेश के इतिहास में पहली बार गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य
71 रुपये प्रति लीटर किया गया है। कांगड़ा जिला के ढगवार में प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट 250 करोड़ रुपए की लागत से इस साल दिसंबर में काम करना शुरू कर देगा, जहां प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग शुरू होने से हजारों दूध उत्पादकों को लाभ होगा। इस प्लांट के शुरू होने से कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी जिला के हजारों किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे। हमारी सरकार ने नए होम स्टे बनाने के लिए ब्याज पर सब्सिडी योजना आरंभ की है। नए होम स्टे और मौजूदा होम स्टे में सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए के निवेश तक शहरी क्षेत्रों में 3%, ग्रामीण क्षेत्रों में 4% तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना शुरू की है। प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं पर समर्थन मूल्य बढ़ाकर 80 रुपये किया है। वहीं मक्की का समर्थन मूल्य 50 रुपये और कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित कर दिया गया है। वहां के जौ को 80 रुपये समर्थन मूल्य दिया गया है। बड़ा बंगाल को भी हमने प्राकृतिक पंचायत का दर्जा दिया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। हमारी सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएं बढ़ाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर 30% और इलेक्ट्रिक बसों पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेगी और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हम प्रदेश के अति निर्धन लोगों के लिए अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने जा रहे हैं। हिमाचल सरकार ने SDM और वीडियो के माध्यम से अति गरीब परिवारों का चयन करवाया। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में 85,000 परिवार ऐसे हैं जो कभी BPL में आए ही नहीं और इन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिला। अब तक 1,80,000 अति निर्धन परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 2,50,000 महिलाएं ऐसी है जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है। हम इन सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,500 रुपया प्रति माह की सम्मान राशि देंगे, चाहे एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं या इससे अधिक महिलाएं भी क्यों ना हो। इसके साथ इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और जिनके पास पक्के मकान नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। हमारी सरकार ने मछुआरों के कल्याण के बारे में भी गहराई से सोचा और जलाशयों में मछली पर रॉयल्टी को घटाकर 1% किया गया। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को हर साल 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। हम उन्हें बोर्ड, रेफ्रिजरेटेड बैंस और दूसरे फिशिंग गियर्स खरीदने के लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। किसानों के साथ साथ बागवानों को समृद्ध बनाना भी हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारा राज्य देश की पहली बागवान नीति लागू करने जा रहा है, जिससे लगभग 82,200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन को जरूरी बनाए जाने से हजारों बागवान को बेहतर दाम मिलने शुरू हुए हैं और उनका शोषण बंद हुआ है। सेब उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए शिमला जिला में पराला और ढली मंडी, धर्मशाला की पासू मंडी जैसे प्रमुख परिसरों का विकास किया जा रहा है। छैला नेरीपुल यशवंत नगर कुमारहट्टी सड़क के सुधार के लिए 203 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा टिक्कर जरोल गहान खमाड़ी सड़क को अपग्रेड करने के लिए 35 करोड़ 93 लाख स्वीकृत किए गए हैं। ये दोनों सड़कें सेब बागवानों के लिए लाइफ लाइन है, क्योंकि इन्हीं के जरिए ज़्यादातर सेब चंडीगढ़ और दिल्ली की मंडियों तक पहुँचता है। हमारा प्रयास है कि बागवानों का सेब कम समय में
बाजार तक पहुँचे ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले यह सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार इस क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है जिसके कारण प्रदेश ने 100% साक्षरता हासिल की है। हमारे प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आज गुणात्मक शिक्षा के मामले में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2021 में राज्य 21वें स्थान पर था। हमने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की है ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चे भी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के काबिल बन सके। हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोला जा रहा है जहां बच्चों को विज्ञान की गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश में और अधिक स्पेशलाइज्ड कॉलेज खोले जाए ताकि हमारे युवाओं को उस शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में पढ़ाई के बेहतर अवसर मिले। हमारी सरकार हमीरपुर में नया अलाइड एंड हेल्थ केयर कॉलेज भी खोलने जा रही है। यहाँ पर 6 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स और बैचलर ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन के कोर्स शुरू होंगे। प्रदेश का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे इसके लिए हमारी सरकार ने डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश विदेश में उच्च और प्रोफेशनल शिक्षा के लिए सिर्फ 1% ब्याज दर पर 20,00,000 रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक आय सीमा 4,00,000 से बढ़ाकर 12,00,000 रुपये तय की गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चे विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजे गए। विद्यार्थियों के अलावा 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजा गया ताकि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को हिमाचल में लागू किया जा सके। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष तक की आयु के पात्र बच्चों को 1,000 रुपया हर महीने दिए जा रहे हैं। 18 से 27 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रदेश और बाहरी राज्य के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में IIT, NIT, IIM, एम्स तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के बाद शिक्षा पर होने वाला खर्च राज्य सरकार उठा रही है। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 7,475 पद भरे गए हैं। TGT आर्ट्स के 425, TGT नॉन मेडिकल के 343, TGT मेडिकल के 169 पद भरे जा चुके हैं। प्रदेश सरकार में JVT के 1700 पद भरे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अब तक CBSE स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 2000 पदों को भरा है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं देने और आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हमारे प्रयासों से प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हुई है। IGMC शिमला, टांडा, नेर चौक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ चमियाना हॉस्पिटल में यह सुविधा आरंभ की गई है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। अब प्रदेश में आम आदमी भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रोबोटिक सर्जरी का खर्चा 5 से 7 लाख रुपया आता है, जबकि हम प्रदेश में 30 से 80 हज़ार रुपये में यह सुविधा दे रहे हैं। IGMC शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रदान करने के लिए 8 करोड़ रुपया और 256 स्लाइस CT स्कैन मशीन की खरीद के लिए 12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। IGMC शिमला राज्य का प्रीमियम स्वास्थ्य संस्थान है, इसलिए इसे यहाँ मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पैट स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीनों की खरीद के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। शिमला के चमियाना हॉस्पिटल और IGMC शिमला में
अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI सुविधा

उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज में मदद मिलेगी। बाकी मेडिकल कॉलेजों में भी यह सुविधा जल्दी उपलब्ध होगी। हम IGMC शिमला में स्पेक्ट मशीन लगाने जा रहे हैं, जिससे घातक बीमारियों का पता चल सकेगा। इसके अलावा IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज में 6-6 हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएंगी। चमियाना हॉस्पिटल, IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। इन प्रयोगशालाओं में खून के एक ही नमूने से कई तरह की जांच की जा सकेगी, जिसकी रिपोर्ट भी बिल्कुल सटीक होगी। स्वास्थ्य संस्थानों में डायग्नोस्टिक सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि मरीजों को समय पर और सटीक जाँच की सुविधा मिल सके। आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियनों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। हमारी सरकार ने पिछले 3.5 सालों में 398 मेडिकल ऑफिसर्स के पद भरे हैं और 346 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टाफ नर्सों के 468 पद भर दिए गए हैं और 200 अन्य पद जल्दी भरे जाएंगे। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 748 पदों को भरा गया है तथा 530 पद भरे जा रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के 326 पद भरे जा चुके हैं और 407 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 176 पद भी भर रही है। इसके अलावा रोगी मित्रों के 500 पद भी भरे जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हो, इस सोच के साथ 330 PG सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है। हमने PG कर रहे पहले वर्ष के विद्यार्थियों को स्टाइफंड 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों का 45,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों का 50,000 रुपये से बढ़ाकर 65,000 रुपये किया है। हमने 100 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा हमारी सरकार में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए NPA बहाल कर दिया है। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स में मरीजों को क्वालिटी मेडिसिन मिले, जिसके लिए सीधी बड़ी कंपनियों से दवाइयां खरीदने की दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश के गरीब परिवारों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार नई स्वास्थ्य बीमा नीति ला रही है। इस नीति के अंतर्गत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा और यह सुविधा बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी। हमारे प्रदेश का वातावरण बेहद समृद्ध और अनमोल है। कुदरत ने हमें सुंदर पहाड़, घने जंगल और निर्मल नदियां दी है। हमारा दायित्व है कि इस प्राकृतिक संपदा को केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और संरक्षित रखें। हिमाचल प्रदेश देश को हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपये की इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रदान करता है। नए जंगल तैयार करना, मौजूदा वनों को बचाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने मिशन 32% की शुरुआत कर वर्ष 2030 तक राज्य के फॉरेस्ट कवर को 29.5% से 32% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जंगल लगाने और जंगल बचाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पौधे लगाने और देखभाल करने वाले महिला मंडलों और युवक मंडलों को 1,20,000 रुपया प्रति हेक्टर की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पौधों के सर्वाइवल रेट के हिसाब से उन्हें इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील है कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़ कर भाग लें। भाइयों और बहनों, हम आपकी कठिनाइयों से भली भांति परिचित है। गुड गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाते हुए हमने प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर लोगों को कई सालों से लंबित मामलों का निपटारा किया है। अब तक इंतकाल के 5,44,000 तकसीम के 36,870, निशानदेही के 63,000 और दुरुस्ती के 19,890 मामलों का समाधान किया जा चुका है। ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।
इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने से राहत मिली है। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी खुद चलकर आम आदमी के पास पहुंच रहा है। हमारी सरकार गरीबों की समस्याओं को करीब से समझने और उनका समाधान करने के लिए गांव तक पहुंच रही है। मैंने खुद बड़ा बंगाल का दौरा किया और रात में रुका भी। आज तक कोई मुख्यमंत्री वहां रात को नहीं रुका था, लेकिन मैंने वहां रुककर आम लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा, उनकी ज़रूरतों को जाना। मैंने प्रदेश के दुर्गम इलाकों जैसे डोडरा क्वार, कुपवी, बागासरान और सरची जैसे क्षेत्रों में रात्रि प्रवास किया। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे सुझावों और उनकी समस्याओं को हमारी सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं का आधार बना रही है। हमारी कोशिश है कि सरकार केवल बंद कमरों से नहीं बल्कि धरातल तक पहुंचकर लोगों की ज़रूरतों के लिए काम करे। प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामले मंजूर किए हैं। 1050 से 1100 रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर रही 59 वर्ष तक की 2,67,000 महिलाओं को अब तक हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 100% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रतिमाह किया गया है, जिससे लगभग 7,000 लोगों को लाभ मिला है। भाइयों और बहनों, प्रदेश की बागडोर संभालते ही समाज के सबसे संवेदनशील और वंचित वर्गों, विशेषकर बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की गई है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसके लिए देश का पहला कानून हमारी सरकार ने बनाया है। इस कानून के तहत 27 वर्ष तक के 6,000 बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। अब सरकार ही इन बच्चों की माता है और पिता भी है। इन बच्चों की शिक्षा और देखभाल का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार उठा रही है। अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। कांगड़ा जिला के लुथान में 92,38,00,000 रुपए की लागत से 400 आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को देश के विभिन्न स्थानों पर एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जा रहा है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। पर्यटन हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए प्रदेश की आमदनी बढ़ाने और लोगों को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके लिए प्रभावित लोगों को 2400 करोड़ रुपए का उचित मुआवजा दिया गया है। देहरा उपमंडल के बनखंडी में 619 करोड़ से जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिला में माता बगलामुखी रोपवे लोगों को समर्पित किया गया है, जबकि चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ कुल 16 हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास कार्य प्रगति पर है। मंडी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से संजौली, संजौली से रकांगपियो और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई है। शिमला प्रदेश की राजधानी है और लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ यातायात की व्यवस्था में सुधार और इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए 2 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। छोटा शिमला से सीटीओ तक तारों के जंजाल को खत्म करने के लिए अंडरग्राउंड डक्ट बनाई जा रही है। छोटा शिमला से लिफ्ट तक अंडरग्राउंड डक्ट का काम पूरा किया जा चुका है। इसके निर्माण से शिमला का पुराना वैभव लौट रहा है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार ने आय में वृद्धि और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए हम जल्दी ही अपनी नई उद्योग नीति ला रहे हैं। नई उद्योग नीति में उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। राज्य सरकार अपने संसाधनों से सोलन जिला के नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रही है। इसके लिए केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपया हमने वापस कर दिया है। अगर केंद्र सरकार की राशि नहीं लौटाई जाती तो उद्योगपतियों को अनिवार्य प्रोत्साहन देने पड़ते, जिससे राज्य के खजाने में बहुत अधिक बोझ पड़ता।
ऊना जिले के हरोली में बलक ड्रग पार्क और सोलन जिले के कंडाघाट में आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। जल विद्युत क्षेत्र में छोटी परियोजनाओं को विकसित करना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया है। पेखूवाला, भंजाल और अगलोर सौर ऊर्जा परियोजनाएं इसका उदाहरण है। राज्य सरकार ने ग्रीन पंचायत कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे सभी पंचायतों में 500 किलोवाट की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाई जा रही है। इन परियोजनाओं से होने वाली आय का 25% हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। भाइयों और बहनों, साफ पानी तक पहुंच सभी का अधिकार है और राज्य सरकार हर नागरिक को साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में साफ पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की जा रही है। साथ ही मौजूदा जल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसका पुनर्निर्माण करने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रहे हैं। हम बस यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने अपने पहले ही बजट में पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने के बारे में सोचा। इस दिशा में ई व्हीकल की दिशा में हमारे कदम बढ़े हैं। हाल ही में 297 ई बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की गई है, जिससे प्रदेश में ई बसों की संख्या बढ़कर 507 हो चुकी है। हम राज्य पथ परिवहन निगम के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोजन बसों में बदलने पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल बसों से 40 से 50 रुपये प्रति किलोमीटर की बचत होगी। प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें मिलने वाली अनुग्रह राशि में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। आज मैं जनजीत से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पारदर्शी और मेरिट बेस्ड रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। हमने सरकारी क्षेत्रों में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। कांग्रेस सरकार में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पिछली सरकार में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में बड़े स्तर पर धांधली हुई, पेपर तक बेचे गए। हमारी सरकार ने युवाओं के साथ धोखा करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। वन मित्रों के 2061 पद भरे गए। प्रदेश मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में हमने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के 7500 पद भरने की मंजूरी दी। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मल्टी टास्क वर्कर के 400 पद, शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के 200 पद, जिला परिषद के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 1975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक एक चौकीदार तथा एक एक मल्टी टास्क वर्कर सहित 3950 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस विभाग में हमारी सरकार ने 1088 कांस्टेबलों की भर्ती की है। अब कांस्टेबल के 734 और पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और पेंशनों का बहुमूल्य योगदान है और हमारी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कर्मचारियों को OPS दी और उनके अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं। हम समझते हैं कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ चिट्टे से बचाना भी बेहद जरूरी है। लोगों के सहयोग से हमारी सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है तथा दूसरे चरण का चिट्टा मुक्त अभियान 7 सितंबर से ऊना जिला से शुरू किया जाएगा। सूचना देने वाले को इनाम दिया जा रहा है, उसकी पहचान भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जा रही है। जल्द ही खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने चिट्टा माफियों की पंचायत स्तर तक मैपिंग की है। नशा माफियों के खिलाफ सख्ती करते हुए हमने PIT NDPS एक्ट लागू किया है, जिसे पिछली सरकार लागू नहीं कर पाई। इस कानून के तहत हमने 205 ड्रग माफियों को हिरासत में लिया है। 400 मामलों में नशा माफियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब तक नशे की काली कमाई से अर्जित की गई 20 संपत्तियों को गिराया गया है। हमारा संदेश साफ है,
कि नशा माफियों की कमर तोड़कर ही दम लेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आशाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक हमारी सरकार राज्य के हरेक क्षेत्र के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

धरती हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जगहों से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: ये सब
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी पढ़ देता।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

99.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदार दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।